0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक रेड कलर की पोस्टल वैन सामने से जाती है. आप मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड से पूछते हो, तुमने विश मांगी? तो वो कहता है हाँ. और तुम पूछते हो कि तुमने क्या मांगा? एंड ही टर्न्स अराउंड एंड सेज, तुम्हारे लिए दुआ मांगी. जब कोई आपसे ये कहता है ना कि तुम्हारे लिए दुआ मांगी, इट्स लाइक टेलिंग समबडी कि मैंने भगवान से तुम्हारे बारे में बात की और मैं बहुत ग्लैड हूँ दैट आई मेट यू. एंड अब मैं भगवान से कह रहा हूँ कि हमेशा तुम्हारा ध्यान रखे और तुम्हें हमेशा सेफ रखे. जब कोई ऐसी बात करता है, इट इज़ सच अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ लव. आप इसे पैसों से, गिफ्ट से, प्रेजेंट से, किसी भी चीज़ से तो तोल नहीं सकते हो. बिकॉज जब किसी ने आपके लिए दुआ मांग ली ना, तो दैट इज़ द हाइएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव मेरे हिसाब से. एंड आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज मैं एक इंटरव्यू रिविजिट कर रही थी रवि दुबे का, एंड ही सेड कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मैं हमेशा सरगुण के लिए सबसे पहले दुआ मांगता हूँ. लकीली दिस इज अ वेरी इंटीमेट कॉन्वर्सेशन ही.

0: Mirchi.
1: Escava la puscava la sacabana. Rambala. Murga, murga. La viva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Inefficient.
8: Very complex.
9: Clumsy.
10: Confusion.
6: Disjointed software ko use karna utna easy nahi jitna aap samajh rahe hain. Toote phoote software se chhutkara pao. Apne business ke liye Zoho One le aao. Zoho One is an all-in-one integrated software suite jisse aap apna pura business chala sakte hain. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing se leke customer support, accounting, operations ya HR. Kaam anek, software ek, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: नो
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
13: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
13: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है ऐसे गंदे काम.
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स. एज यू जस्ट हर्ड, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो. आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
3: हाई रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: Very good. How are you?
1: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो I was like कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है. Like it's a legitimately dirty mind you've got.
3: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
1: और ऐसे देखो कैसे. तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या? लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
3: स्टार्ट वहाँ से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
1: हाँ.
3: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
1: हाँ.
3: बट क्लियरली नॉट ऑल मेन डिजर्व अ सेकंड चांस.
1: करेक्ट.
3: देयर वर टू मेनी आउटबर्स्ट, हर बार का निखरे.
1: हाँ.
3: बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
1: अच्छा.
3: And this was between her and me. So we decided, she sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested. So he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
1: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना, व्हाट एम आई सेइंग, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
3: लाठी भी ना टूटे.
1: बेब यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
3: यस एब्सोल्युटली.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।

रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot. It's hot.
1: Thanks for your advice, darling. I'll think about it. Okay, bye. ऐसे ही sarcastically आप एक इंसान को जवाब दोगे अगर कोई आपको fashion advice दे रहा हो and you yourself are a fashion influencer. Exactly इसी तरह से जब आप गुस्से में होते हो ना, आपके partner ने आपको कुछ कहा है बहुत irritate करने के लिए और आपको इतना गुस्सा आ रहा है that you want to kill that person. Psychologists एक technique device करके लाए हैं which is called thought diffusion. उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में जो भी thoughts आ रहे हैं कि यार ये तुझे प्यार नहीं करता या ये तुझ पर defo cheat कर रहा है, इन सब थॉट्स को अगर आप सार्केस्टिकली बोलो थैंक यू फॉर द सजेशन आई विल कम बैक टू इट. अगर आप अपने थॉट से अपने आप को थोड़ा सा भी अलग कर सकते हो और इस कॉन्वर्सेशन को टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद योर थॉट्स इज अ वे ऑफ थॉट डिफ्यूजिंग, यू विल एक्चुअली नॉट ओनली फील बेटर बट अगर यू आर इफेक्टिव एट थॉट डिफ्यूजन आपके पास एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव्स होंगे टू लुक एट द सिचुएशन. हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ मिसकम्युनिकेट किया हो सकता है आपने उसे ठीक से परसीव ना किया हो, बट टू गेट टू दिस कंक्लूजन thought diffusion is actually a great technique. Isse try karke dekho, especially if your partner is crazy AF and always driving you mad. And if it helps you, let me know all about it. Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do. Lekin kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: I have a crush on my boss and I don't think it's a very healthy thing. Please help me figure this out.
2: Roshi ke DM se.
1: Okay, so Naina ka ye message aaya hai and she's like, Roshi, maine ek naya job shuru kiya recently and I swear something is going on between mere boss aur mere beech mein. We get along really well, he's very easy to talk to aur mujhe aisa lagta hai ki main sare time usse baat karna chahti hu. Kabhi kabhi I swear I think I have noticed him checking me out as well and maybe usse honestly check out kar rahi hu. But I really feel like admitting my attraction to him is not an option kyunki wo mera boss hai and we have this power dynamic where it's inappropriate if I tell him that I find him hot. Ab mujhe kya karna chahiye? Well, Naina, my darling, you've said it yourself. Having a crush on your boss या any superior जो आपके office में है is a unique form of torture और आपको खुद पता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए simply because workplace boundaries are really good. Trust me, I've been there, done that, and it never ends well, 100% of the time. दूसरा, अगर मैं आपकी जगह होती and you've admitted yourself कि आप अपने बॉस को एडमिट नहीं करना चाहते हो, how you feel, you don't want to change the power dynamic, make an ick list. जितनी बार भी वो कुछ हल्का सा ग्रोस भी करता है, जैसे मे बी खाना खाने के बाद ही स्लाइटली बर्ब्स और आई डोंट नो वो अपना मुंह खोलकर खाता है या वो जब चबाता है तो आवाज आती है, व्हाटएवर, जस्ट मेक एन ick लिस्ट. एवरी टाइम यू फील अट्रैक्टेड टू हिम, मेक श्योर यू आर रेफरिंग टू द ick लिस्ट. दैट विल मेक श्योर कि आपका क्रश या इन्फैटुएशन बहुत हाई लेवल तक कम हो जाएगा. सेकेंडली, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि आप जितना टाइम इस क्रश को दोगे उतना टाइम यू आर एक्चुअली नॉट लुकिंग एट पीपल हु कैन बी पोटेंशियली ग्रेट पार्टनर्स. एंड आई हैव रियलाइज कि हम

0: Mirchi. Iskaba la puskaba la sakaba la. Yamba la burga burga. La vieja la burga.
1: Mirchi burga.
2: Hello,
1: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
1: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा?
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपने गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
1: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ? मन डोले मेरा, मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन।
1: हाँ सर।
2: और ऐसा बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
1: है। सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
1: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Beat ke saath, only on Mirchi. It's hot. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर किसी के साथ बहुत ही थिक इमोशनल फ्रेंडशिप में हैं, डज दैट अमाउंट टू चीटिंग, यस और नो? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, मैंने ये सवाल आपसे पूछा है, इसका जवाब आप मुझे दोगे इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड टॉकिंग इन अ सिमिलर वे विद अनिल, ही इज विद मी ऑनलाइन. इन्होंने मुझे अपना नंबर भेजा, सो आप भी अपना नंबर भेज सकते हो एंड वील गेट टॉकिंग. बट मीन वाइल, हेलो अनिल.
2: राइट मैम, बोलिए.
1: मैम नहीं है यार, मेरा नाम तो रोशी है.
2: ओह यस यस यस, रोशी मैम.
1: रोशी मैम नहीं, खाली रोशी चलेगा.
2: रोशी रोशी, ओके ओके ओके, वेरी फाइन मैम. बड़ा ट्राई किया आपको मैंने कॉल करने के लिए, बड़ा ट्राई किया मैंने.
1: सॉरी यार, आपने मतलब काफी तामझाम हैंडल करके यू गॉट टिल दिस कॉल, है ना? आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में?
2: मैम कुछ नहीं, मैम एक फ्रेंडशिप से होगी मेरी आउट ऑफ कंट्री, तो मैंने उसको थोड़ा सा, मैं मैरिड हूं तो मैंने उसे चिपका लिया. बस मेरे को थोड़ा गिल्ट हो रहा है उसको बताऊं ना बताऊं. फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है.
1: हाँ.
2: जनरली वैसा जैसा कुछ सीरियस वाला नहीं है, बस जनरली जैसे नॉर्मल टॉक होती है. तो मैं आपका सजेशन लेने के लिए, कई बार एफएम नॉर्मली मैं चलाता नहीं हूँ.
1: हाँ.
2: गाड़ी में जब होगा तभी चलाता हूँ.
1: हाँ.
2: तो वैसी फ्रेंडशिप होगी मेरी अच्छी खासी, मतलब रोज, मतलब दो तीन महीने हो गए. तो मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको बताऊं कि मैं मैरिड हूं नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं.
1: एक्चुअली गिल्ट लग रहा है. एंगल्स तो बहुत सारे हैं, आई टेल यू व्हाई. एक तो आपने उनको बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं, एंड शी हैज द राइट टू नो, बिकॉज दोस्ती में भी यार शादी होना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? इट्स लाइक सेइंग कि आप कहां रहते हो, है ना? सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट यू नीड टू टेल समवन. मोर देन दैट, ये दिस सीम्स लाइक अ लिटिल मोर देन प्लेटोनिक फ्रेंडशिप. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ऐसा नहीं है यार, हर रिलेशनशिप सिर्फ प्लेटोनिक या सेक्सुअल नहीं होता, उसके बीच में भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स होते हैं. ठीक है? सो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो इमोशनली बहुत बॉन्डेड होते हैं, एंड अगर आपकी 3 महीने में अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई है, आई विल गो सो फार टू से दैट इट साउंड्स लाइक अ वेरी थिक रिलेशनशिप. ठीक है? इमोशनली सिक्योर रिलेशनशिप. सो ना कि सिर्फ आपको इन द पर्सन जिनसे आप बात कर रहे हो उन्हें बताना चाहिए दैट यू आर मैरिड, सो दैट शी कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि वो एक शादीशुदा इंसान से दोस्ती रखना चाहते हैं या नहीं. दूसरा, जैसे आपने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि आप किसी और से बात कर रहे हैं 3 महीने,
2: yes, yes, yes, yes, yes,
1: है ना? नहीं बताया.
2: मैंने मेरे को वैसे मैसेज आया था उस पे व्हाट्सएप पे, तो नंबर तो किसी और का मिला रही थी. तो ऐसे तो मुझे जनरली उसने पूछा तो मैंने बता दिया हम नॉट गेट मैरिड. तो वो मुझे ही नहीं पता था कि हम इतनी बात बढ़ेगी. मित्र हम
1: अच्छा, उन्होंने वो ये कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं आपसे, पूछ चुके हैं कि आप शादी.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: There's always this one ex जिसे stalk करना आपको बहुत अच्छा लगता है. It's almost your obsession. तो आपके कितने भी ex boyfriends हो या girlfriends हो, 3, 4, 2, but there's always a one ex जिसके साथ आप particularly obsessed होते हो. और गलती से उस ex ने अगर कभी weight lose कर दिया

हो या अपनी डीपी में किसी और बंदी के साथ फोटो डाली हो या बंदे के साथ एंड यू डोंट नो हु दैट अदर पर्सन इज, एस्पेशली इफ दैट अदर पर्सन इज हॉट, आपको इतना खराब लगता है ना कि पूरे हफ्ते की बीटी अशोर्ड होती है. लेकिन क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं? क्या हम उन्हें स्टॉक करना बंद कर देते हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे ही हम अपने एक्स को एक ग्लो अप अवतार में देखते हैं, वी एंड अप स्टॉकिंग देम इवन मोर. हमारी बीटी हो रही है, दैट्स ओके, लेकिन उसे गालियां देने में इतने मजे जो आते हैं. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई एक स्पेक्टेक्युलर एक्स है, you just can't get over stalking that person, I think you should send me your number and we will compare notes. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. Let's talk about your ex, baby. And while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अर्ज किया है, मैं नहीं चाहता वो मेरे बुलाने से आए, मैं नहीं चाहता वो मेरे बुलाने से आए, मैं चाहता हूँ वो रह ना पाए और बहाने से आए। एक्सेप्ट मेरे एक्स ने मुझे ये शेर लिखकर भेजा, आई वाज लाइक यार अगर मैं नहीं आ रही हूँ और तेरा फोन नहीं उठा रही हूँ और तेरे टेक्स्ट का जवाब सिर्फ एक वर्ड में लिखकर भेज रही हूँ, इसका क्या मतलब है? इतना स्मार्ट तो तू है, स्कूल तो तू गया है, वो डिग्री तो मैंने देखी है, कॉलेज वी डोंट रियली नो, बट द पॉइंट इज कि जब आपको कोई भाव नहीं दे रहा होता इसका ये मतलब है कि वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे एक्सेस ये बात समझते क्यों नहीं है, और अगर उन्हें समझ आ जाती है तो उसे विश्वास क्यों नहीं करते हैं? तुम ब्रैड पिट नहीं हो, नहीं थे, अंधी मैं थी और अब मेरी आंखों का वो अंधापन चला गया है। ऑन दैट नोट, अगर आपकी भी जिंदगी में आपके एक्सेस ने सडनली ये शेर व शायरी का रूट अपनाया है, विच इज एक्चुअली रियली जस्ट बॉदरिंग यू, इट्स प्लेन इरिटेटिंग, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga. Milci, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है, आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक,
4: मिर्ची फ्रेश माल,
5: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप ना मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम.
0: द सीक्रेट बॉक्स.
1: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो, एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
2: हाई रोशी,
1: हाउ आर यू?
2: Very good. How are you?
1: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है, लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
2: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
1: और ऐसे देखो कैसे, तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या, लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
2: स्टार्ट वहाँ से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
1: हाँ.
2: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
1: हाँ.
2: बट क्लियरली नॉट ऑल मेन डिजर्व अ सेकंड चांस.
1: करेक्ट.
2: देयर वर टू मेनी आउटबर्स्ट, हर बार का निखरे.
1: हाँ.
2: बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
1: अच्छा.
2: And this was between her and me. So
1: huh.
2: we decided, she sent him a text.
1: Huh.
2: She started flirting with him.
1: Huh.
2: He was a little interested.
1: Huh.
2: So he flirted back,
1: huh.
2: which she of course told me.
1: Huh.
2: And after that,
1: huh.
2: she very clearly asked him if he's seeing someone or not.
1: Huh.
2: Obviously, we were seeing each other. He
1: huh.
2: would not tell me that he's flirting with someone else.
1: Huh.
2: So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating.
1: Huh.
2: He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
1: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना, व्हाट एम आई सेइंग, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
2: लाठी भी ना टूटे.
1: बेब यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
2: यस एब्सोल्युटली.
1: ले ले बेबी.
3: यू've been roshified.
1: यू आर अमेजिंग. I mean, I don't know. I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो.
2: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है.
1: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है. And like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी mystery caller की तरह, अगर आपकी भी जिंदगी में कोई confession है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी. काम छे आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

मैंने ये रियलाइज कर लिया कि जिंदगी में नथिंग वर्क्स लाइक पोएट्री, स्पेशली अगर आप किसी को रोमांस करने की कोशिश कर रहे हो. सो आई नो दिस गाय पिछले 3-4 सालों से जो इटालियन है एंड वेयर इन टच क्योंकि सबके पास व्हाट्सएप होता है. परसों रात को हम दोनों एक जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और ही स्टार्टेड रीडिंग आउट, मतलब उसने मुझे ऑडियो नोट्स भेजे ऑफ इटालियन लव पोएट्री. आई स्वेयर टू गॉड हम इतने अच्छे दोस्त हैं इतने सालों से, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे प्यार की उस नजर से नहीं देखा जितना मैंने उस पोएट्री सुनने के बाद उसे देखा. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये टिप तो मुझे आपको भी देनी चाहिए. अगर अभी तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस नहीं किया है विद रीडिंग आउट पोएट्री या शायरी, इसे ट्राई करके देखो. मेरे हिसाब से ये एक फूल प्रूफ प्लान है. वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलने के लिए यू कैन फील फ्री टू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. एंड ऑनेस्टली, प्यार होना चाहिए, उसे पाने का कोई भी तरीका वर्क्स, क्योंकि जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Milci, burga. Hello.
2: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
1: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या ही हद सेंशियस गाना है ये भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे याद है गाना मैंने शायद टीवी पे ये फिल्म आ रही थी तब देखा सुना था, या चित्रहार में देखा सुना था। और ये जो अगला गाना हम सुन रहे हैं ना, ये भी कोई कम सेंशियस नहीं है। लेकिन ये मैंने पता है कब पहली बार सुना था, इसे मैंने एज ए रीमिक्स सुना था। इस रीमिक्स के वीडियो में थी आयशा टाकिया, शायद आपको याद आ जाए वो वीडियो जिसमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई होती हैं और उस गाने में क्लब दिखाते हैं, लिफ्ट भी दिखाते हैं। अब तो याद आ ही गया। ओरिजिनली ये गाना जवानी दीवानी का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को मोहल्ले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कोंडा में कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर।
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ये बंद करो
4: सर। बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Lead ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
2: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

1985 की फिल्म गुलामी जब बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली काफी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तब फिल्म के स्टार्स में से जो सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फीस नहीं लूंगा इस फिल्म के लिए, वो थे बड़े दिल वाले काइंड हार्टेड धर्मेंद्र जी। और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जब पता चला कि धर्मेंद्र जी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी फीस लेने से मना कर दिया। तो इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हेमा मालिनी की उनकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: वैसे दुल्हन, किनारा, खुशबू, देन सीता गीता, इट्स अ डिफरेंट रोल, लाल पत्थर।
0: वैसे हेमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एक्सपोज करने वाली फिल्में या सेंसुअस रोल्स वो नहीं करती थी, जिसकी वजह उनको ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता था, और उनकी मम्मा भी ये सब अलाउ नहीं करती थी, जो उनके करियर के काफी डिसीजंस लेती थी। वैसे हेमा जी से एक बार ये भी पूछा गया था कि उनकी मम्मा जब हमेशा उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर रहती थी तो उनके सामने क्या रोमांटिक सीन्स करने में वो अनकंफर्टेबल होती थी।
1: हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू अ रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
0: चलिए इसी बात पे गाना सुनते हैं, जिसका पिक्चराइजेशन शायद इतना सेंसुअस नहीं था, लेकिन ये गाना एक अलग ही तरह का सेंसुअस और रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Rani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों, पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1983 की फिल्म सदमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसका जो क्लासिक गाना है ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना सुरेश वाडकर जी की आवाज में है, गुलजार साहब ने लिखा है, इले राजा का कंपोज किया हुआ। और इले राजा जी जब इसे कंपोज कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके म्यूजिक ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर पता है कौन थे? A.R. रहमान। किसने सोचा था कि उस फिल्म के कंपोजर्स के ग्रुप में जो कीबोर्ड प्लेयर लड़का है वो और इस फिल्म के लिरिसिस्ट गुलजार साहब मिलके कुछ 25 साल बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग बनाएंगे जिसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो भाई, ऐसी है जिंदगी, कभी लात मार देती है कभी गले लगा लेती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

नसीब फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अपेरेंटली अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साथ में लास्ट फिल्म थी। ऐसा सुनने में आता था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सेट्स पे देर से आने की आदत से परेशान थे, और यहाँ अपने बच्चन साहब तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो उनसे नहीं हो पा रहा था बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत लेट आते थे सेट्स पे, तो उन्होंने उनके साथ काम करना फिर बंद कर दिया। एक्चुअली आई थिंक ये 1981 की फिल्म है नसीब, उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई भी नहीं साथ में। कोई पहले से बन रही हो, लेट रिलीज हुई हो, वो अलग बात है। आई थिंक पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Burka, burka. Naveed wala burka. Mirchi burka.
3: हेलो.
4: हाय शिवानी.
3: हाय.
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा.
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता.
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: अपने सिर पे करवा ले.
4: शिवानी,
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
3: नहीं
4: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शाला, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
3: कुकड़ुकु.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

भाई लता मंगेशकर जी ने जब मैंने प्यार किया फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए थे तो कैसे किए थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप कहेंगे स्टूडियो में गा के माइक के सामने किए होंगे। ऑफ कोर्स वैसे किए थे, लेकिन उन्होंने ना उस फिल्म के सारे गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि फिर उनको अब्रॉड टूर पे जाना था, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह पे। और आप सोचिए, ये फिल्म आई थी 1989 में, और उस टाइम लता मंगेशकर जी 60 साल की थी। क्या उनका स्टैमिना, उनकी एनर्जी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल भी किया अगले दिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद। ऐसे ही होते हैं फिर कर्मठ लोग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: तुम्हारा नहीं।
1: देव आनंद साहब का असली नाम क्या था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और एक बार एक इंटरव्यू में इस पर खुद उन्होंने क्लैरिटी दी थी, सुनिए।
2: नाम है धर्मदेव, मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। Yes. देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है और इसलिए मैं धर्मदेव आनंद से देव आनंद।
1: और अर्ली 40s जब वो लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए, उन दिनों को याद करते हुए सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: मैं लाहौर गम कॉलेज में था, मैंने बी ऑनर्स किए थे और मैं एमए जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा, मैंने 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक है में, तो हम एक है का वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आजादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं।
1: कई बार मुझे लगता है कुछ पुराने एक्टर्स में एक अलग तरह की संवेदनशीलता इसीलिए होती थी बिकॉज इन्होंने इतने बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस विद चारू।

प्रोफेसर फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में शमी कपूर के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कल्पना। इनका पूरा नाम कल्पना मोहन था। एक्चुअली इनका रियल नेम अर्चना मोहन था और ये फ्रीडम फाइटर अवनी मोहन की डॉटर थी। अवनी मोहन एक पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड थे और कल्पना जी बहुत अच्छी कथक डांसर भी थी। और कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में जब बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था बाहर के देशों से भी, तो जब कोई ऐसा कथक परफॉर्मेंस होता था तो उनको इनवाइट भी किया जाता था। काफी फिल्मों में थी ये, प्यार किए जा फिल्म में थी एंड तीन देवियां फिल्म में वो जो गाना है अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो कल्पना जी ही तो हैं देवानंद साहब के साथ। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची। अरे

1968 की फिल्म शिकार का सुपरहिट गाना पर्दे में रहने दो। इनफैक्ट इस फिल्म के और कोई गाने याद भी नहीं है, यही गाना इकलौता है जो याद रहता है जो सुपरहिट हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना जब फिल्म के ट्रायल शो में आशा पारेख जी ने देखा ना, तो उन्होंने ऐसी डिमांड की कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। ऐसा सुनने में आता है कि काफी लोगों ने उनके ऐसे कान भर दिए थे कि ये गाना अश्लील है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाने से मना कर दिया था क्योंकि उनको भी ये गाना अश्लील लगा था। बताइए कितने सीधे लोग थे उस टाइम के, ऐसे ऐसे गाने उनको अश्लील लगते थे, आज तो उनको क्या ही लगता होगा। खैर काफी बातचीत डिस्कशन आर्गुमेंट के बाद फाइनली ये गाना फिल्म में रखा गया, जिससे आशा पारेख जी थोड़ी तब नाराज भी हो गई थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपर हिट हो गया, इस गाने के लिए आशा भोसले जी को उस साल बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तब सारी नाराजगी दूर हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना, मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है।
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
5: हेलो
3: हेलो,
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: बता दो।
1: प्रेम चोपड़ा साहब हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए और जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या मिली? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करनी पड़ी वो थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे तो फटर फटर अंग्रेजी बोले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सुनिए इस सबसे प्रेम चोपड़ा साहब को क्या रियलाइज हुआ, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
2: तुमको देख के मैं बड़ा ताजुब करता था, यार कितने कॉन्फिडेंस है इनमें और हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैं चाहता था उनकी तरह बनूं। तो फिर मैंने ड्रामा में कोशिश की काम करने की, तो मुझे मिला एक ड्रामा। दूसरी तीसरी दफा जब इंग्लिश में प्ले मिला तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक का रोल मुझे दिया गया, जो सेंट्रल रोल था, वो बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैंने आके अपने वालिद को, वालिद साहब को कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ ट्राई। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बड़ी इनसिक्योर प्रोफेशन है, तुम भी अब जैसे IAS वगैरह कुछ करो या कुछ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाओ, उसमें यही करना चाहिए रेगुलर ऑफिसर। तो मैंने कहा कोशिश तो मैंने ज़रूर करूँगा। अरे कहते हैं भाई ये बड़ा गड़बड़ है प्रोफेशन, क्या करोगे तुम? तो और मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूंगा वहाँ, ये सोच सोचना, आई हैव लार्ज फैमिली एंड आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा नहीं मैं जाके कोशिश करता हूँ, एक दो महीने का खर्चा लेके मैं चला गया।
1: चले तो गए लेकिन बॉम्बे पहुँच के उनका सफर इतना आसान नहीं था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली।

0: कई लोगों के आइडल गुलजार साहब के आइडल रवींद्रनाथ टैगोर जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन टैगोर जी का लिटरेचर गुलजार साहब की लाइफ में कैसे आया, लेकिन उससे पहले किस तरह की किताबें वो पढ़ते थे, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में गुलजार साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टू स्टार्ट विद बड़ी जासूसी नॉवल पढ़ा, थ्रिलर्स, तलिस्मी, छुराव, बहराम, डाकू। वो एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, पार्टीशन हुआ था, खोखे बना लिए थे रिफ्यूजीज ने ले आके। अखबार भी बेचते थे, किताबें भी देते थे, किराए पर भी देते थे, और हफ्ते में चार आना और किताबें जितनी चाहो पढ़ लो। यही उनका अंदाजा था, भाई एक किताब पढ़ लेगा, दो पढ़ लेगा और क्या। और मैं अब जासूसी नॉवेल का तो ये चस्का होता है कि जब तक क्लाइमेक्स ना मालूम आप छोड़ते नहीं, और मैं रात भर में उसको खत्म कर लेता था, अगले दिन फिर पहुंच जाता था। तो तंग आ गया वो आदमी मुझसे, घाटे वाली बात हो गई ना। उसने यही कहा कि चारण में कितनी किताबें दूंगा भाई मैं तुम्हें, नहीं। और ये ऊपर के शेल्फ से उसने एक किताब निकाली और ये ले जाओ, और नहीं है किताबें भी। That man didn't know कि उस एक वक्त में जब वो किताब निकाल रहा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। वो किताब उसने दी थी, उसका नाम था गार्डनर बाय टैगोर, नज्मों का ट्रांसलेशन था, पहली नज्म थी माली, बस वो किताब लग गई। That changed my total pattern of reading and picking up books and literature जिसे कह सकते हैं आप। That became my passion.
0: Celebrating गुलजार साहब पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। नफरत

हाँ, ये पत्थर और मोम के जिक्र से बशीर बद्र साहब की ये गजल याद आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga.
2: Hello,
1: Mr. Gotham. Sir, I actually asked sir, I was requesting to have. I asked sir, that you singing, ringing, singing, sir. So sir, singing is a little song. I the songs I sing, sir, they are a little different.
2: How can I
1: say this? Until you hear it. First, in the mall, I had a snake. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भैया आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में और नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
2: सर कुछ गा के सुनाएगा
1: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है
2: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह
1: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
2: कोंडा में कौन से गाने
1: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा
2: सुन ले बात मेरी
1: बात
2: सुन पहले बात
1: हाँ सर
2: और इसे बंद करिए बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
1: है सर बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते समझ गया ना तू बात
1: जी सर
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका

0: Complete ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana.
1: Rambala.
0: Murga, murga. La misma la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
2: हाँ जी बोलो
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
2: हाँ जी देते
3: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाओ यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
2: कहाँ भिजवाना
3: है मैं आपको
2: बता दो
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता
2: है जी उठवा लेंगे उतना ही हम
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
2: किसको जी
3: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
2: क्या गिर गया
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
2: भाई साहब क्या उठवाना है
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
2: हाँ
3: सामान उठवा
2: क्या कर रहा
3: है तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
0: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर आप एक मैनेजर हैं और कंपनी का कोई रूल आपको सही नहीं लगता तो ऐसे वक्त में क्या स्टैंड लेना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि जिंदगी में लेट्स से आप एक ऐसे मकाम पर हैं या कुछ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं, अगर आप एक मैनेजर हैं और कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और मैनेजमेंट जो है वो आपको कहते हैं कि कुछ नए रूल्स आ गए या आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, और वो आपको लगता है कि ज्यादातर जो काम कर रहे हैं उनके लिए सही नहीं है। ऐसे केस में जहां आपको पता है आप मैनेजमेंट से लड़ नहीं सकते और आपको ये भी पता है कि जिन लोगों के लिए रूल बना है उनके लिए सही नहीं है, इस कश्मकश से कैसे बाहर आएंगे आप?
4: सी, जब भी कोई चैलेंज होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, चाहे वो वर्क प्लेस पर है चाहे वो घर पर है, हमें उसके लिए कोई ना कोई स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। हम कोई पुरुषार्थ तो करेंगे, एफर्ट तो करेंगे
3: जी,
4: पर मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो चीज आपको परेशान नहीं करे
3: जी।
4: इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम करेंगे,
3: अतः आपको दिमागी तौर पे परेशान नहीं होना चाहिए
4: क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा आप कुछ भी और करेंगे तो।
3: हाँ, कि ये क्या बात हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना सोचें।
4: अगर आपको जाकर के मैनेजमेंट से बात भी करनी है ना, उस कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन का भी रिजल्ट तभी आएगा जब आप बहुत स्टेबिलिटी से वो करेंगे
3: जी,
4: असर्टिवली करेंगे। ये बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं कि बस हमें कुछ करना है, लेकिन कुछ करने से पहले आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपना ध्यान रखना।
3: बिल्कुल,
4: आप किस वाइब्रेशन के साथ जा रहे हैं। देखो, आध्यात्मिकता में बहुत सुंदर कहते हैं आप वृत्ति से वृत्ति बदल सकते हैं
3: जी, जी,
4: आप दृष्टि से दृष्टि बदल सकते हैं
3: जी।
4: जो बोल करके नहीं हो रहा वो आप सोच से भी किसी की सोच को परिवर्तन कर सकते हैं। आप बहुत कुछ साइलेंस में कर सकते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रोफेशनल लाइफ में सिचुएशंस के हिसाब से अपना अप्रोच बदलना कितना जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैनेजमेंट ने कोई ऐसे चेंजेस और रूल्स निकाले हैं जो आपको ठीक नहीं लगता। अब एक हो सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएं उस चीज को सुनकर, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये नीचे वालों के बारे में नहीं
4: होता है।
3: हम सोचते हैं, बहुत एजिटेट हो जाते हैं, फिर हम जब बात करने जाते हैं तो हमारा तरीका भी बड़ा अग्रेसिव होता है। जब हम अग्रेसिव होते हैं तो सामने वाला हमारी बात को इतना
4: महत्व नहीं देता
3: ना, क्योंकि आप बात को तो महत्व बाद में देंगे, आपका जो अग्रेशन है वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है।
4: बिल्कुल,
3: आप सामने वाले को रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्टफुली बात करें तो वो सुनेंगे भी। तो पहली चीज है कि हम अपना ध्यान रखें, दूसरी बात है हम जरूर बात करें। बहुत करके हम सारी दुनिया से बात करेंगे, कैफे में, कैंटीन में बात करेंगे, जूनियर से बात करेंगे, लेकिन राइट व्यक्ति से जाकर के बात नहीं करेंगे। मन में कहेंगे वो समझेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आई हैव सीन की जो अथॉरिटी पर होते हैं, दे आर समटाइम्स सीइंग थिंग्स ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। किसी ने वो दूसरा पर्सपेक्टिव उनको दिया ही नहीं होता, और उनको भी वो दूसरा पर्सपेक्टिव क्लिक नहीं हुआ होता, वो हमेशा इतने क्लोज्ड नहीं होते हैं। कभी कभी वो इमीडिएटली भी अगर उस चीज को अग्री नहीं करेंगे
4: तो बाद में शायद थोड़े दिनों बाद सोच समझ के वो शायद कर ले।
3: हो सकता है जिस समय आप अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आपसे आर्ग्यू भी करें, और अपने पहले पर्सपेक्टिव जिससे वो अटैच्ड है आपको कन्विंस करने की भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो आपने बात कही है ना बहुत ही स्टेबिलिटी और असर्टिवनेस के साथ, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: काम रहकर

0: लिए वर्कस्पेस को पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, आइए समझते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: उसके बाद भी अगर वो चीज आपके अनुसार नहीं होती है, देन ऑल्सो यू हैव चॉइस। वन इज जो आपने कहा कि नौकरी छोड़ दें, कई लोग छोड़ देते हैं, उनको नहीं कंफर्टेबल होता, वो सफोकेट हो जाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं ठीक है मैंने अपना पूरा ट्राई किया, अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी इस समय पर इस सिस्टम का पार्ट हूँ, मुझे मेरा रोल प्ले करना है। उनको भी पता ये चीज सिस्टम से आ रही है,
3: सही बात।
2: उनको भी ये चीज पता है ना कि ये नियम मैंने तो नहीं बनाया, ये पॉलिसी मैंने तो नहीं बनाई, मैं भी तो इस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। आ तो ये टॉप लेवल से रही है एंड आई एम ओनली इम्प्लीमेंटिंग इट, तो वो सामने वाला भी समझता है कि इनकी हमारे प्रति शुभ भावना है, पर इनकी भी लिमिटेड पावर है। सो देर आर वेज टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ वेरी काम मैनर, पर ज्यादातर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत भी आप चेंज लेकर आ सकते थे ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा चेंज इतना तो हो सकता है कि आपने ट्राई किया, वो नहीं माने, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, पर आपकी शुभ भावना भी सामने वाले को एम्पावर करती है। आपकी प्योर जो भावना है ना, वो भी कहती है अच्छा ठीक है आपने तो ट्राई किया ना, अभी क्या कर सकते हैं, अब जो होगा अच्छा ही होगा।
4: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: जब वर्क प्लेस पर आपके प्रिंसिपल्स और सिचुएशंस क्लैश करें तो मेंटल पीस को कैसे चूज करें, आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे कुछ आपको ऐसी चीजें करने को कहा जाता है जिससे आप अग्री नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन ना केवल आप अग्री नहीं करते, कभी कभी वो आपके प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ होता है। तो उस समय क्या करें, जब आप बोलते हैं भैया मैं अग्री नहीं करता, ये जनरल गुड के लिए भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी छोड़ना इतना आसान डिसीजन नहीं होता बिकॉज और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है, तो कौन सी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करूँ और कौन सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, ये कैसे तय करें?
5: वो आपकी चॉइस होगी।
4: अच्छा,
5: वो कोई भी नहीं बता सकता। सी फॉर सम पीपल लाइक आई सेड, वो अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा सफोकेट कर देता है।
4: बिल्कुल करता है।
5: वो उनको उनकी मेंटल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर, रिलेशनशिप पे तोड़ लेता है। वो कहते हैं मैं बिना नौकरी के चला सकता हूँ,
4: लेकिन ये
5: मैं कम पे वाली नौकरी पे चला सकता हूँ, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं
4: वो नहीं,
5: या मेरे पास कुछ महीने नहीं होगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे फिर से अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, मुझे फिर से अपने को प्रूव करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ पर मैं ये नहीं कर सकता। और कई कहते हैं भाई आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट, मैंने यहाँ ट्राई कर लिया जितना मैं कर सकता था, मैंने सिस्टम से बात भी करी, उनको कन्विंस करने की भी कोशिश करी, पर अभी वो नहीं मान रहे हैं, तो मैं होता तो नहीं करता, लेकिन अभी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो फिर बहुत शुभावना से अभी मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज, तो फिर हम वो चीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि जब ले ऑफ करना होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, अपनी टीम के किसी मेंबर को कहना उनको बहुत मुश्किल होता है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो, नोटिस पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दो, लेकिन अब ये तो हर ही कंपनी में हो रहा है। आप उस समय कहें कि ये बिल्कुल ही मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो भी तो अपनी रीति से गलत नहीं है, वो कहेंगे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम लॉसेस में जा रहे हैं, हमें ये करना पड़ेगा। आप कुछ बेटर तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ करना है तो आप सोचें आप कितना उसको और अच्छे से कर सकते हैं, कंपैशनेटली कर सकते हैं, कि सामने वाले को उस चीज़ का एक धक्का भी नहीं लगे और उनको सपोर्ट भी मिले कि वो आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। बट इट इज़ गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल्स चॉइस, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Marriage Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: लेऑफ जैसे मुश्किल वक्त में मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को इमोशनली स्टेबल कैसे रहना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इससे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक ऐसे मैनेजर हैं जिनको किसी को ले ऑफ करना है, और सबसे पहले आप मैनेजमेंट से बात करते हैं, लेट्स से नोटिस पीरियड के बारे में। मैनेजमेंट ने कहा भाई एक महीना है, आप कहते हैं फेयर नहीं है, 6 महीने तो मिनिमम होना चाहिए, और किसी तरह आपने मैनेजमेंट को कन्विंस भी कर लिया, ना 1 महीने हुआ ना 6 महीने हुआ, आपने 3 महीना फिगर आउट कर लिया, तो आपको लगता है चलो हम जीत गए। अब आप जाके एम्प्लॉय के पास जाते हैं, उनसे ये कॉन्वर्सेशन करते हैं, और फिर एम्प्लॉय कहता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुमको लगता है 3 महीने में नौकरी मिल जाएगी, और आप धक्के में रहते हैं कि एक तरफ कंपनी 1 महीना बोल रही थी जो इसको पता नहीं है, और मैंने उसको खींच तान के 3 महीने कराया, मुझे बहुत जद्दोजहद लगी करने में, और सामने से मुझे उल्टा, मतलब मैं कंपनी की भी थप्पड़ खा रहा हूँ, एम्प्लॉय भी थप्पड़ खा रहा हूँ, तो मैनेजर को कभी कभी लगता है ये चल क्या रहा है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए।
4: सी, आपने जितनी प्रेपरेशन करी ना उसमें ये प्रेपरेशन छोड़ दी थी।
3: कौन सी वाली?
4: उसका रिएक्शन क्या होगा।
3: हाँ,
4: आपने जो किया वो जरूरी था और बहुत अच्छा था। आपने थप्पड़ नहीं खाया, आप अपने प्रिंसिपल्स पर रह करके, अगर हम इससे बाहर चले जाए ना कि हम कुछ करें और उसके बाद सामने वाले को उस चीज के लिए हमें थैंक्स कहना चाहिए या कुछ वैलिडेशन देना चाहिए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर हम कुछ करते हैं और फिर हमें लगता है कि सामने वाला उस चीज को अक्नॉलेज करेगा। पर आप एक बार ही सोच करके देखें, ये प्रेपरेशन भी अगर आप कर लेते कि जिसको आप ले ऑफ करने जा रहे हैं
3: जी,
4: उसके लिए 3 महीने क्या, आप 3 साल भी कहते तो भी उसको एक बार तो धक्का लगना ही था।
3: बिल्कुल,
4: आपके साथ हो तो आप अपने पर रख करके देख लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी रोजी रोटी उस पर चल रही है। तो वो व्यक्ति जो एक बार ही रिएक्ट करता है वो डर से करता है, वो इनसिक्योरिटी से करता है। लेकिन अगर हमने ये प्रेपरेशन कर ली होती कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैंने भले अपनी रीति से हर प्रकार की कोशिश कर ली, तो भी एक बारी तो वो इमोशनली रिएक्ट करेगा ही, एंड आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बी काम एट दैट टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको वो बात स्वीकार हो जाएंगे।
3: उसका गिल्ट लेके ना चले कि उसने सामने वाले ने क्या कह दिया मुझे।
4: पहले तो गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। आपने मिस्टेक भी करी ना तो भी 1 सेकंड का गिल्ट, फिर रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ऐसे हम गिल्ट करते रहे तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक डॉक्टर है, वो अपनी सारी जान लगा देता है किसी पेशेंट को बचाने में, उसके बाद भी अगर वो ना बचा पाए और वो गिल्ट में चला जाए तो वो कोई उसकी मिस्टेक तो नहीं है ना,
3: तो वो अगला सर्जरी नहीं कर पाएगा,
4: बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट फिर दूसरे को समझाना पड़ता है कि आप भगवान तो नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहे वो हम पेशेंट की बात करें या आपके सामने एक एम्प्लॉई बैठा है, आप ये नहीं भूले कि हर एक अपना कर्मा भी लेकर के आता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रोफेशनल लाइफ के बुरे वक्त में खुद को टूटने से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: समझो उनके लिए कहने में आएगा कि बुरा वक्त है, वो भी हर एक का अपना अपना उतार चढ़ाव है। आप हेल्प कर सकते हैं, आप किसी के भाग्य से नहीं लड़ सकते। अगर उसको इससे अच्छा कुछ मिलना है या उसको कोई तकलीफ सहन करनी है, जिससे वो, कितने लोग इमोशनली ग्रो करते हैं जब उनके सामने कोई ना कोई चैलेंज आता है, वो भी उनके लिए एक्सपीरियंस बन जाता है। उनकी लाइफ में उनको किस चीज की जरूरत है वो आपको नहीं पता है।
4: बिल्कुल सही।
3: उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने हैं और उससे उन्होंने कौन से लेसन्स लर्न करने हैं और कौन सा फेथ डेवलप करना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपना पार्ट अच्छे से बजाते हैं एंड देन वी डोंट गो इन गिल्ट एंड वी टेल आवरसेल्व्स हमने अपना बेस्ट किया, बाकी जो उसके भाग्य का है, जो उसके नसीब का है, वो उसको मिलना ही है, यहाँ से नहीं तो कहीं और से मिलेगा।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: नो।
1: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णव केटरर्स, द फाइनेस्ट इंडोर एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस इन USA। लाइव कुकिंग ऑन प्रेमिसेस फॉर एंगेजमेंट, मैरिज, बेबी शावर, बर्थडे पार्टीज एंड अडल्ट डे केयर। We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241. Or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्रेया, मोहम्मद मैंगलोर से लिखते हैं कि ईगो और जलन से कैसे बचें और दूसरों की सक्सेस को अपनी सक्सेस जैसे कैसे सेलिब्रेट करें और कैसे महसूस करें कि हम भी उसकी सक्सेस में इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा सवाल है।
3: जलन कब होती है? जब हम कंपेयर करते हैं।
2: जी,
3: कंपैरिजन, अगर हमें ये समझ जाए कि दो सोल्स एक डिफरेंट जर्नी पर है, मेरे कर्म से मेरा भाग्य है, उनके कर्म से उनका भाग्य है, तो हमें किसी की भी सफलता को देख करके जेलसी नहीं होगी। वी आर ऑन अ डिफरेंट आर ओन इंडिविजुअल जर्नी।
2: जी,
3: जलन कब होती है? जब मुझे लगता है शायद उसने मेरा क्रेडिट ले लिया।
2: हाँ।
3: शायद ये मुझे मिलना था तो उसको मिल गया।
2: जी,
3: समवेयर वो इनसिक्योरिटी और जेलसी सेट इन होने लग जाती है। जेलसी का रूट कॉज कंपैरिजन है।
2: हाँ।
3: और कंपैरिजन में आप क्या करते हैं कि उसको मिला मुझे नहीं मिला, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि आपको वो मिलेगा जो आपके कर्म है, उनको वो मिलेगा जो उनके कर्म है, तो आप मन किसी की सफलता को देखकर जेलस होते ही नहीं हो। आपको पता है कि उनके कर्म का भाग्य उनके सामने लौट कर आया है, जो हम कई बार कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा है वो तुझे मिलेगा और कोई छीन नहीं पाया है। सो कंपैरिजन इज दैट ओल्ड एज डीमन दैट रॉब्स यू ऑफ हैप्पीनेस।
2: क्या बात है,
3: आपकी खुशी को वो खत्म कर देता है।
2: तो कंपैरिजन मत करो मोहम्मद, और खुश रहो, और अपने दोस्तों की सक्सेस में आप इंक्लूडेड भी फील करेंगे और सेलिब्रेट करने का मन भी करेगा।
3: देखिए, एक चीज ये भी समझना है कि अगर हम किसी की सफलता से जलते हैं तो हम सफलता से जल रहे हैं।
2: हाँ,
3: वो हमारे पास कभी नहीं आएगी।
2: सही बात है।
3: अगर आप औरों की सफलता में खुश होते हैं,
2: क्या बात
3: तो
2: है,
3: वो सफलता आपके घर में भी दस्तक देगी।
2: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
3: एंड जेन्युइनली फ्रॉम इनसाइड, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी सफलता में, उसके आगे बढ़ने में खुश होंगे, उसको दुआएं देंगे, तो वही एनर्जी आप तक लौट करके आए।
2: तो सफलता की जो फसल है, सफल की जो फसल है, वो तुम आज बो। अगर आप सफलता से ही ईर्ष्या करने लगोगे तो सफलता आपके घर पे कभी दस्तक नहीं देगी।
3: सफलता का मतलब भी क्या है, हिंदी में बहुत सुंदर है। इंग्लिश में हम कहते हैं सक्सेस, हिंदी में हम कहते हैं सफलता। सफलता का मतलब है सफल करना। तो सफल किसको कहते हैं? एक्चुअली हमारे हिंदी में बहुत सुंदर वर्ड है। आप उस व्यक्ति को सफल कहते हो जिसको जो कुछ मिला है वो उसको सफल करता है, चाहे वो उसका समय है, टैलेंट है, स्किल है, धन है। जब आप उसको दूसरे के बेनिफिट के लिए लगाते हो, उससे किसी का कल्याण होता है, जिसको हम कहेंगे दानी है, महादानी है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, सच्चे अर्थों में वो सफल है। किसी के पास बहुत है लेकिन मना वो सफल, उसको सफल करना नहीं आता, उसको लगाना ही नहीं आता। क्योंकि जब हम सफल करते हैं तो वो हमारा भी बढ़ता है। आप कभी भी नोट करना, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज भी अच्छे से बनानी आती है, सफल करने का मतलब है आप किसी और को सिखाते हो।
2: सही बात है।
3: तो वो स्किल आपकी भी बढ़ेगी।
2: हाँ।
3: और उनको आपने सिखाया तो उनसे दुआएं मिलेंगी।
2: हाँ।
3: तो उनकी दुआएं और आपकी जो स्किल बढ़ रही है वो आपको और सफल करती जाएंगी।
2: क्या बात, बहुत बढ़िया।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: इट्स 7:30 AM। मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
6: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

मन कस्तूरी रे। जग दस्तूरी रे मन कस्तूरी।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मिलन गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं कि कभी आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर श्रेया, मिलन गांधीनगर गुजरात से लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पैसा

0: इसीलिए जो शब्द अभी यूज होता है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी
1: जी,
0: क्योंकि वो चीज अलग है ही नहीं ना। हमें लगता है धर्म, हमने आधा घंटा पूजा पाठ करी, कोई सत्संग किया, वो धर्म है। फिर दिन भर में हम बहुत व्यस्त हैं, हमें कर्म करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। पर वो कर्म हम कई बार गलत तरीकों से भी कर रहे होते हैं।
1: अच्छा,
0: किसी का नुकसान भी कर दिया, किसी को डांट भी दिया, किसी के प्रति क्रिटिकल भी हो गए, निंदा भी करी, नीचे गिराया, बहुत कुछ हमने किया, तो वो हमारा जो कौन से खाते में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कौन से
1: लॉस में जाएगा,
0: लॉस में जाएगा। तो वो धर्म को कर्म में लेकर ही तो आना था। आज वो कर्म क्या है, इसलिए कर्म नहीं कहना चाहिए, कर्म योग कहना चाहिए। सो एनीथिंग व्हिच इज डन राइट वो पुण्य के खाते में जाएगा। तो धर्म आपको क्या सिखा रहा है, आप दिन भर कर्म करो, लेकिन ऐसा कर्म करो जो सबका भला हो, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, और आप धन के साथ साथ दुआएं भी कमाए। देखिए धन बहुत जरूरी है, लेकिन किसके लिए, वस्तुओं के लिए
1: जी।
0: अब बिना धन के लिए तो आप कोई चीजें तो नहीं आ सकते,
1: सही बात।
0: लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जब नोटबंदी हुई तो जो नोट बंद हो गए, अभी उसका आपको ट्रक भर के भी दे दे,
1: ये लीजिए,
0: क्या फायदा। 1,000 का नोट है, आप उसको ट्रक भर के भी दे दे, क्या फायदा है। क्योंकि उस मनी की जो वैल्यू है, इफ इट कैन हेल्प यू बाय अ कमोडिटी, वो वस्तु के लिए है। पर उसको वस्तु तक रखे ना,
1: सही बात,
0: उसको वस्तु तक रखे, आप सोचे कि फिर वो धन आपको खुशी भी दे देगा, रिश्ते भी दे देगा और हेल्थ भी दे देगा, वो नहीं हो सकता,
1: नहीं हो सकता।
0: वो आपको मटेरियल बेनिफिट दे सकता है, मटेरियल कंफर्ट दे सकता है। तो दोनों को साथ चलाएं, धर्म को कर्म में लेकर आएं, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, कर्म योग करें, तो फिर आपको वो जीवन के अंदर कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी।
1: क्या बात है, मुझे तो कंटेंटमेंट, जब मैं इनका सवाल पढ़ ही रहा था आपके लिए, तो मेरी शायद फेवरेट कविता है, एक तरह से हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत प्यारी कविता है, कई बार कोट करता हूँ कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जीवन में जो बोला सुना माना उसमें क्या भला बुरा। और उसके बाद जो प्यारी लाइनें हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ दुनिया के इस मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी ही दे ले में, हर एक यहाँ पे अपनी भुलावे में भूला, हर एक लगा है यहाँ पे अपनी अपनी दे ले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जगह, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, ये बहुत खूबसूरत लाइन है, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं ये सोच सकूं, जो किया कहां माना उसमें क्या भला बुरा।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is officially the beginning of Mirchi Mornings for today. और देखो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, emotional support की, trust issues को heal करने की, या फिर money conversion. मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट एंड दोस्त. शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. अभी फिलहाल तुम ड्राइव कर रहे हो काम की तरफ, या फिर घर से बैठकर काम करने का प्लान कर रहे हो, या फिर यू आर सर्वाइविंग योर वर्क मीटिंग्स, या फिर ब्रेकफास्ट का डिबैकल, पैकिंग योर लंच, या फिर बच्चों के टिफिन पैक कर रहे हो. जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ में रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉर्निंग्स को बनाती हूँ एक्स्ट्रा मिर्चीदार, क्योंकि मेरे पास है ढेर सारी गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. एंड साथ साथ में मेरे पास है बॉलीवुड के बैंगर्स, एकदम मिर्चीदार. तो ये सब कुछ चाहिए तो चिपक के बैठे रहो यहीं पर. फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप करना है मुझे तो 9033 मिर्ची पर. फटाफट से अपने मैसेजेस ड्रॉप करो, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virpa la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएंगे?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कोंडा में कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: मैं पागल है क्या?
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
1: सुन ले बात,
2: मेरी
1: बात सुन, पहले बात सुन।
2: हाँ सर।
1: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर
2: सर। बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Ed ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोबे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
10: पहले भी मैं तुमसे मिला.
11: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
12: Vishal Mishra.
9: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
13: and SaiUSAInc.com.
14: Listener MA, back to back gana sunega.
15: Back to back gana sunega.
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब हम चलने वाले हैं एक टाइम ट्रैवलिंग जर्नी पर. 1783 में जब फ्रांस में मॉन्गोल्फर ब्रदर्स ने पब्लिक को बोला ट्रस्ट अस एंड लॉन्च देयर फर्स्ट हॉट एयर बलून. जस्ट इमेजिन. एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1917, द वेरी फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइजेस वर अवार्डेड. इमेजिन गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर राइटिंग. देन इन 1940, ऑपरेशन डायनेमो, ऑल्सो नोन एज द मिरेकल ऑफ डंकर्क, रैप्ड अप विद मोर देन 338,000 सोल्जर्स इवैक्यूएटेड. And then Poland's first partially free election became an important turning point in Europe's political story. And closer to home, aaj ki tarikh is also remembered with sadness in India after last year's stampede outside Bengaluru's M. Chinnaswamy Stadium. And that's it for time traveling for today. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Sunte raho Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Yeah.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings and let's talk about some Bollywood tea. According to multiple reports, Aamir Khan may be getting married to Gauri Spratt on 5th of July in a private ceremony at home. And the plot twist is there is apparently not going to be a giant filmy shadi. There won't be a helicopter entry, no 27 dance performances, bas close family, close people, low-key vibes hone wali hai. Mujhe lagta hai unki dono ex-wives bhi wahan par maujood hone wali hai. Reports also say they've been building a quiet life together for over a year now and they just want to make it official, which is pretty cute and efficient. Very unlike desi wedding spreadsheets, right? लेकिन ऑनेस्टली यार, देयर इज समथिंग कंफर्टिंग अबाउट दिस. बॉलीवुड ने हमें सिखाया था ड्रामेटिक रेन कन्फेशंस और रियल लाइफ में स्टेबल लाइफ, फैमिली का आसपास होना और एक परफेक्ट बनी हुई गर्मा गर्म चाय. इसके अलावा थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए बस, और क्या चाहिए. एंड कैन वी अप्रिशिएट दैट लव स्टोरीज अपेरेंटली डोंट चेक कैलेंडर्स नाउ. समवेयर क्यूपिड इज गोइंग योर एज टाइमलाइन, ये सब क्या होता है यार. होल्ड माय बो एंड आरो. मैं बताता हूँ कि 60 इयर्स में प्यार कैसे करते हैं. ऑफकोर्स दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स राइट नाउ, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं और मुझे भी ऑफिशियली उन्होंने बुलाया नहीं है. लेकिन एज थिंग्स विल अनफोल्ड आई विल कीप यू पोस्टेड. अभी फिलहाल जाकर मेरी पोस्ट चेक करो. Mirchi Press इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi. दैट्स 9033 6472444. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: इर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज का वेदर ना मुझे टॉक्सिक काम और इमोशनली अनअवेलेबल लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ऑफ कोर्स यू गेस्ड इट राइट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब टाइम है तापमान, वातावरण, इन सब की बातों का। राइट नाउ इट्स सिटिंग एट अ कूल 57 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स क्लियर, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट है, अभी रुको। द विंड इज एक्चुअली मेकिंग इट फील लाइक 55 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि थोड़ा सा ठंडा रहेगा माहौल। एंड द नेक्स्ट 24 आवर्स विल बी प्रेसिपिटेशन फ्री, यानी कि कोई बारिश नहीं गिरने वाली है, जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। Clear skies will continue through tonight and into tomorrow morning. So if you've been waiting to wear that outfit without carrying an emergency umbrella, you may do so. Aaj ka temperature range dekh lete, low jayega 55 degrees Fahrenheit tak aur high jane wala 87 degrees Fahrenheit tak. तो सुबह स्वेटशर्ट का वेदर रहेगा, आफ्टरनून में सडनली हैदराबाद इन मे टाइप की फीलिंग आने वाली है। एंड क्विक रिमाइंडर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर एसपीएफ 50++++ और साथ साथ में मिर्ची की वाइब्स बना कर रखो। एंड ऑफ कोर्स यू नो लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, बिकॉज मौसम ही कुछ ऐसा है कि ऊपर नीचे जाने वाला है तापमान। फिलहाल हम जाने वाले हैं सुनने मिर्चीदार बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। अगर जुड़ना है तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHOIPR। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझे मैसेज करना है तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में and welcome to Mirchi Hour का 3 for this hour.
2: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी इज सेट टू बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 10th बाय क्रॉसिंग 4,399 कंसेक्यूटिव डेज इन ऑफिस मूविंग पास द रिकॉर्ड हेल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. नंबर टू पर अ पॉलिटिकल आउटफिट इन इंडिया कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी अनाउंस्ड इट्स स्पोक्सपर्सन लाइनअप इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट सौरभ दास, रिसर्चर एंड फिल्म मेकर विजेता दाहिया एंड आशुतोष रांका एंड IIT कानपुर अलुमनस. They've also announced a protest later this week. And number three per actor Anushka Sharma shared that homeopathy played an important role in her life after reposting a video by a physician. And social media did what social media does best. Immediately turned it into a full discussion. Some people supported personal experiences. Others raised concerns about relying on alternative approaches instead of evidence-based medical care for serious conditions. And that's it for Mirchi Hour ka 3 with me Priscilla on Mirchi Mornings. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La birba, la burka. Mirchi, burka.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी।
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शेरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
16: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
17: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
18: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
17: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
19: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
17: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है।
17: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। ये है मिर्ची मॉर्निंग। सो हियर्स व्हाट मेकिंग फिल्मी वेव्स। द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड अ स्टेटमेंट आफ्टर रिपोर्ट्स अराउंड रणवीर सिंह एग्जिट फ्रॉम डॉन 3 एंड अक्षय खन्ना एग्जिट फ्रॉम दृश्यम 3। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन हाउसेज इन्वॉल्व्ड एंड द गिल्ड सेड एग्जिस्ट्स एट द 11th आवर कैन अफेक्ट ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म इन द इंडस्ट्री। नाउ बिफोर एनीवन स्टार्ट्स ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, no villain edit here. We don't know the full story behind individual decisions and schedules and creative choices and timing in films can get, let's say, more complicated than explaining to relatives why you still rent. But interesting thought ye hai ki Bollywood may run on talent and calendars. Also, can we appreciate that the 11th hour sounds so intense? One thing's for sure, fans are now officially in detective mode waiting to see what happens next with these two films. Tell me, are you team lock the cast early or team protect the plot and peace? Let me know. Mirchi Pris mera insta handle hai, twitter handle hai, फटाफट से वहां पर जाकर मुझे अपनी लेटेस्ट गॉसिप दे सकते हो या अपने जवाब भेज सकते हो। और व्हाट्सएप पर अगर कनेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दार गाने एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: 9:30 AM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आर के ज्वेल्स. आर के ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आर के ज्वेल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए. योग कीजिए.
2: विश्व को भारत का उपहार योग है. अच्छी सेहत का आधार. आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें. हर दिन 30 मिनट योगा करें.
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी.
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
8: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी proudly present an enchanting musical concert by classically trained Dr. Meenal Mategaonkar का एक timeless musical concert, जिनका साथ देंगे renowned tabla artist अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
7: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
9: अभी न जाओ छोड़ कर.
8: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
12: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
13: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
14: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स एंड टुडे इज 4th of June एंड इफ इट्स योर बर्थडे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। आज का दिन ऑफिशियली बिलोंग्स टू यू। परमिशन ग्रांटेड टू इग्नोर कैलोरीज, आंसर मैसेजेस लेट एंड ड्रामेटिकली से इट्स माय बर्थडे वीक, टाटा। एंड नाउ हु यू शेयर योर बर्थडे विद, देयर्स एंजेलिना जोली, एक्ट्रेस, फिल्म मेकर, ह्यूमैनिटेरियन, बेसिकली इन्हें कौन नहीं जानता है। एंड देन वी हैव गॉट रसल ब्रांड, कॉमेडियन, actor and proof that some people are born with extra talking speed. And from our desi side we have Priyamani, powerhouse performer across Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi cinema. Also in today's celebrity birthday buffet, model and TV host Bara Feli, actor Noah Weil from ER, legendary voice and screen actor Keith David, साथ साथ में Scott Wolf and comedian Horatio Sanz. So, अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है, स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल टू प्रूव बट स्पिरिचुअली एक्यूरेट टू से यू आर प्रिटी ऑसम। सो आज तुम्हारा बर्थडे असाइनमेंट ये है कि ढेर सारा खाओ पियो, ऐश करो, कॉल पीपल यू लव, कॉल पीपल हु लव यू, एंजॉय द डे एंड हैव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और इसी तरह पूरे साल भर के दिन भी बिताने हैं। ऑलराइट, अभी फिलहाल जल्दी से लगाती हूँ मैं तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, और तुम मुझे फॉलो करो जाकर मिर्ची प्रिंस, इज माई हैंडल नेम MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
0: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
4: पहले भी मैं
5: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा,
6: विशाल मिश्रा,
0: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com
7: एंड saiusainc.com।
8: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला और अब हम पता करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट.
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500 पर ट्राई आउंस. अगर पर ग्राम की बात की जाए तो $144 $144 पर ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का 1 ग्राम का प्राइस है. ताकि आप गोल्ड के प्राइस कंपेयर कर सके इंडिया से, जी हाँ, $140 पर ग्राम, $1440 पर तोला सोने का प्राइस है अमेरिका में. आप खुद कंपेयर कर लीजिए, इंडिया से गोल्ड के प्राइसेस अमेरिका में सस्ते हैं. तो आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में, चाहे पैम सर्टिफाइड बार्स हो, गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एट राज ज्वेल्स. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
1: ऑलराइट, गोल्ड एंड सिल्वर का रेट तो पता चल गया, बट क्या तुम्हें पता है मुझसे कनेक्ट करने का तरीका? मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na pierdba la burga.
1: Milci, burga. Alo.
2: Alo, usko maa se mat uthao, yaar. Alo.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
1: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स, जहाँ पर अब राशि जोन आ चुका है.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी मेष राशि, आज स्टबन मत बनो यार. यूनिवर्स इज सेइंग अपडेट अवेलेबल, प्लीज डोंट क्लिक रिमाइंड मी लेटर. लेट गो ऑफ ओल्ड हैबिट्स एंड रिन्यू योरसेल्फ. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल, लकी नंबर इज 19. टॉरस यानी वृषभ राशि, टुडे इज नॉट टीम विन और टीम लूज, इट्स टीम सबको चाय मिलेगी. कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन. लकी कलर इज पिस्टाशियो ग्रीन, लकी नंबर इज 24. जेमिनी यानी मिथुन राशि, इफ समवन ट्विस्ट्स योर वर्ड्स टुडे पोलाइटली बट फर्मली बिकम योर ओन पीआर मैनेजर. क्लैरिफाई, डोंट कलेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइक लॉयल्टी पॉइंट्स. लकी कलर इज सिल्वर मिस्ट, लकी नंबर इज 11. कैंसर यानी कर्क राशि, ऊप्स मोमेंट हैपन, इफ यू मेड अ मिस्टेक ओन इट, फिक्स इट एंड मूव ऑन. यू आर ह्यूमन, नॉट अ सॉफ्टवेयर अपडेट. लकी कलर इज ओशन ब्लू, लकी नंबर इज 27. लियो यानी कि सिंह राशि, डोंट पैनिक बिफोर द प्लॉट ट्विस्ट, थिंग्स आर नॉट कोलैप्सिंग, योर ब्रेन जस्ट ओपन अननेसेसरी टैब्स, कीप शोइंग अप. लकी कलर इज सैफ्रन गोल्ड, लकी नंबर इज 5. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, प्लान्स चेंजिंग लास्ट मिनट, अनोइंग, यस, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली नॉट. Adapt karo, make the new plan look intentional. Lucky color is lavender grey, lucky number is 34. And that was your Rashi Zone part pehla. Agla part lekar aaungi thodi si der mein, tab tak tum suno ye Mirchi Dar bangers only on Mirchi Mornings. Aur jaakar mujhse bhi connect kar lo social media par. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search istunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
15: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi fam. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड जस्ट लाइक योर वीकेंड प्लान्स आज का दिन खत्म हो चुका है बट बिफोर आई लीव एक लास्ट बॉलीवुड की टी तो देना बनता है. इब्राहिम अली खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक दरवाजे के पास खड़े हैं फोन पर बात कर रहे हैं एंड देन ही पुशेस समवन इनसाइड द डोर एंड देन द कैमरा फॉलोज इनसाइड द डोर एंड वी फाइंड आउट दैट इट्स पलक तिवारी एंड अपेरेंटली दिस कपल इज रूमर टू बी डेटिंग. लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये वीडियो क्लिप देखने के बाद इंटरनेट पर काफी डिबेट छिड़ गया है क्योंकि In the clip, people online had very different reactions. Some felt Ibrahim's gesture looked rude. Others thought he may have been trying to guide or protect her once paparazzi appeared. The conversation got even bigger after photographers reportedly continued following Palak inside the building. And a lot of people online started talking about celebrity privacy too. And honestly, classic internet hai yaar ye. Same video, 50 opinions, unlimited confidence hai logon ka yaar. Aajkal matlab har koi ट्रोल बना फिर रहा है. बट मे बी टूडेज रिमाइंडर इज दिस शॉर्ट क्लिप्स डोंट ऑलवेज कम विद कॉन्टेक्स्ट एंड द कॉमेंट सेक्शन शुड नॉट बी प्रमोटेड टू सुप्रीम कोर्ट. बट व्हाटएवर द रियल स्टोरी इज विशिंग एवरीवन इन्वॉल्व मोर पर्सनल स्पेस एंड

fewer unsolicited zoom-ins. And that's my cue to leave you and say bye-bye for today. Milenge tumhe kal, same time, same place, same frequency. Tab tak ke liye, you be good. Khao piyo, aish karo, maze karo. वीकेंड आ रहा है, उसकी तैयारी करो और मेरा वेट करो. और अगर वेट ना हो पाए, मिस कर रहे हो मुझे, तो मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. कमिंग अप, मिर्ची दे आर बैंगर्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: आई जस्ट सॉ न्यूज अबाउट अ गर्ल जो कि ट्रेन के बाहर लटक कर रील्स बना रही थी.
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirchi. और आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस लड़की का हुआ क्या, बची कि नहीं बची? नहीं बची. वो अपनी मम्मी की पिटाई से नहीं बची. जब वो अंदर आई तो मम्मी ने पकड़ा और बस कोने में ले जाके दो चमार दिए. वेल, अगर मैं अपनी बात करूँ, यानी कि हमारी जनरेशन की बात करूँ ना, तो हम वो जनरेशन है जो सिर्फ मम्मी की पिटाई से ही डर कर नहीं, बल्कि इस डर से भी कि अगर गिर गए तो क्या होगा. मतलब ये डर हमारे लिए इतना बड़ा हुआ करता था कि मम्मी की पिटाई तो बाद में आती थी, पहले हमें ये डर होता था कि यार दरवाजे के पास भी अगर खड़े हुए हैं ना चलती हुई ट्रेन के अंदर, और दरवाजा अगर खुला हुआ है तो ऐसा लगता था जैसे दरवाजा हमें अपनी तरफ खींच लेगा और हम बाहर गिर जाएंगे. इतना फोबिया, मतलब ये सिर्फ फियर ही नहीं, ये फोबिया हुआ करता था. सो मच सो दैट आई स्टिल रिमेम्बर कि यार जब ट्रेन चलती हुई होती थी ना तो मैं टॉयलेट नहीं जा सकती थी. नहीं, मैं बिल्कुल ट्रेन का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किया करती थी चलती हुई ट्रेन में, बिकॉज मुझे ये डर हुआ करता था कि वो जो टॉयलेट का होल है, वो जो खुड्डी है, मैं उसके अंदर गिर जाऊंगी. आज तो मैं ये सोच भी नहीं सकती यार, लेकिन उस टाइम पे लिटरली ऐसा फील होता था कि वो जो खुड्डी है ना वो मुझे अपनी तरफ खींच लेगी और मैं गिर जाऊंगी. बहुत ही वियर्ड डर है, लेकिन तब ये वियर्ड नहीं, डरावना हुआ करता था. और मम्मा ना मुझे जबरदस्ती ले जाती थी कि तुमने पूरे दिन वॉशरूम यूज नहीं किया है, चलो हल्के हो जाओ. गॉड, आज की जनरेशन के पास सिर्फ बाथरूम जाने के इतने इंटरेस्टिंग किस्से तो डेफिनेटली नहीं होंगे. हाँ, रील्स की इन्फॉर्मेशन सबके पास है. चलो जी, इसी के साथ चलते हैं 90s और अर्ली 2000 के दौर में, और इसी के साथ मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana, rabana, burga, burga, la birba, la burga, Milci, burga!
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
8: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
7: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
9: अभी न जाओ छोड़ कर।
8: 28th June, 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab, mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अगर कोई पूछे कि मुझसे दोस्ती करोगे तो क्या जवाब होना चाहिए? सोचूंगी, देखूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. अभी क्या करूं यार, इतना फिल्मी पना है ना मेरी रगों में दौड़ रहा है जो कि मुझसे ना डायलॉग्स भी फिल्म के ही निकलते हैं, अपने ऑथेंटिक डायलॉग्स नहीं निकल पाते हैं. सीन यही है. और अगर मुझसे दोस्ती करोगे मूवी के बारे में बात करी जाए ना, तो पता है क्या, इस फिल्म में जो ऋतिक रोशन वाला रोल है ना, राज वाला, वो एक्चुअली अभिषेक बच्चन का होने वाला था. और यही नहीं, रानी मुखर्जी भी इस फिल्म का पार्ट नहीं होने वाली थी. यानी कि पूजा का रोल वो नहीं, अमीषा पटेल प्ले करने वाली थी, जिन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया. देखो ना किस्मत कैसी है. मतलब उस वक्त अभिषेक एंड रानी वर सपोज टू बी टुगेदर. मतलब गॉसिप्स थी, रूमर्स थे या रियलिटी थी, गॉड नोज. लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि अभिषेक हु वाज सपोज टू बी इन द फिल्म वो नहीं आए, एंड रानी हु वाजंट सपोज टू बी इन द फिल्म वो फिल्म में आ गई. एंड उदय चोपड़ा इस फिल्म का हिस्सा कैसे बने रहे? वेल ऑफ कोर्स वायर इफ मूवी थी तो उदय चोपड़ा को तो होना ही था ना यार. देयर वाज अ टाइम जब बहुत कोशिश की वायर इफ ने कि किसी तरीके से उदय चोपड़ा जो है वो हिट हो जाए, कभी लीड तो कभी कैमियो, लेकिन कुछ भी नहीं चल पाया. ये भी किस्मत है बॉस, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना उसे वो मिल ही जाता है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
9: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
10: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
7: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: અમેરિકામાં શ્રેષ્ઠ ઇન્ડોર અને આઉટડોર કેટરિંગ સેવા, એન્ગેજમેન્ટ, લગ્ન, બેબી શાવર, જન્મદિવસ પાર્ટી અને એડલ્ટ ડે કેર, તમારા સ્થળ પર લાઇવ કુકિંગની સુવિધા. અમે અમેરિકામાં તાજું ફરસાન અને મીઠાઈ બનાવીએ છીએ. અમે ન્યૂ જર્સી અને ન્યૂયોર્કમાં ડિલિવરી સાથે ટિફિન સેવા પણ આપીએ છીએ. આજે જ બોમ્બે એક્સપ્રેસ અને વૈષ્ણવ કેટરર્સને કોલ કરો એટ 732-986-6241 ઓર વિઝિટ 2849 વુડબ્રિજ એવન્યુ, એડિસન, ન્યૂ જર્સી.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM, HD2, इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मुझे दोस्ती करोगे, हालांकि ये फिल्म ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई. और अब मुझे पता लगा है कि ये फिल्म ओरिजिनल आइडिया नहीं थी, इंस्पिरेशन थी किसी मूवी का.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, मुझसे दोस्ती करोगे was actually inspired by the Hollywood film The Truth About Cats and Dogs, जो कि 1996 की एक romantic comedy हुआ करती थी, जहां पर एक बंदी pretends to be another बंदी जब वो एक बंदे से बात कर रही होती है. बट मुझसे दोस्ती करोगे का बाकी सारा जो पार्ट है ना, यानी कि करीना की एक्टिंग, रानी की स्वीटनेस, ऋतिक रोशन की एनर्जी और उदय चोपड़ा की नॉटीनेस, ये सब ओरिजिनल थी. मगर इस फिल्म की एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स हमने देखा और एंजॉय किया है, उस क्लाइमैक्स को एक बारी में हामी नहीं मिली थी. इस क्लाइमैक्स को पता नहीं कितनी बार रीराइट किया गया था, जस्ट सो दैट इसके अंदर वो बैलेंस आए जो कि एक सही बैलेंस हो ड्रामा और रोमांस का, और ये भी इंश्योर करता हो कि जो एंडिंग है ना वो हैप्पी भी हो और इमोशनल डेप्थ भी रहे इस एंडिंग के अंदर. ओए होए होए होए, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि केमिस्ट्री लैब में कोई फॉर्मूला की टेस्टिंग हो रही हो, और वही हुआ होगा इस फिल्म की एंड के साथ. लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अंत भला ही था, लेकिन यार इस फिल्म का अंत भला नहीं हो पाया, सैडली. हालांकि ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, हाँ, क्योंकि ये वो दौर था जब मैं YRF प्रोडक्शंस की कोई भी मूवी नहीं छोड़ा करती थी. फिल्मी लोग यू नो क्या कर सकते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: Dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda dinda din

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के बारे में बिच कर रहे हो और आप जिसके बारे में बिच कर रहे हो आप उसी को वही मैसेज भेज दो? आपके साथ नहीं हुआ तो खैर कोई बात नहीं, मनीष मल्होत्रा के साथ ऐसा हुआ था एक जमाने में।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड एक्चुअली सिनेरियो ये था कि मनीष मल्होत्रा मूवी दोस्ताना के लिए ड्रेसेस डिजाइन कर रहे थे और इसी मूवी में प्रियंका चोपड़ा और मनीष के बीच में थोड़ी नोकझोंक चलती रही रिगार्डिंग द कॉस्ट्यूम्स। अब क्या किस चीज को लेकर नोकझोंक थी वो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ कॉस्ट्यूम्स को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लैश चलता रहा। एंड देन फाइनली केम अ डे जो कि प्रियंका चोपड़ा का लास्ट शूटिंग वाला दिन था, और हुआ ये कि मनीष मल्होत्रा उसी दौरान करण जौहर से बात कर रहे थे एंड ही वाज एक्चुअली बिचिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ा, जिस पर कि मनीष मल्होत्रा ने एक मैसेज टाइप किया ये लिखते हुए कि थैंक गॉड इट्स प्रियंकाज लास्ट डे, गुड रिडन्स, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा टाइप किया और भेज दिया, लेकिन करण जौहर को नहीं प्रियंका चोपड़ा को ही। आउच, जोर से लगा ना? वेल एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ये प्रियंका चोपड़ा को कितनी जोर से लगा, लेकिन इसके बाद ऐसा कोई कैटफाइट जैसा सिनेरियो किसी ने नहीं सुना और शायद ऐसा सिनेरियो हुआ भी ना होगा। हो सकता है प्रियंका चोपड़ा ने इसको बड़े ही मैच्योरली लिया और इस चीज को हंसी में उड़ा दिया कि यार मनीष को मुझसे छुटकारा चाहिए या जो भी था। कुल मिलाकर बात इतनी है कि दोनों ने इस टॉपिक को बड़ी ही मैच्योरली हैंडल किया, वरना बात तो कब तक हम तक पहुंच चुकी होती। अब ये बताओ आपको ये बात कहीं किसी से पता लगी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं हूं ना आपकी चलती फिरती बॉलीवुड मैगजीन, आपको ऐसी खबरें देती रहूंगी। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello,
1: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं
1: सर? मैं एक्चुअली आपसे ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
1: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने गा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाएगा?
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
1: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने हैं
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया।
2: मैं पागल है क्या?
1: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात सुन पहले।
1: हाँ सर।
2: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
1: सर। बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
1: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: अमित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
6: पहले भी मैं तुमसे मिला.
7: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
8: Vishal Mishra.
5: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life Vishal Mishra's Pagalpan Tour Friday, June 26th Hard Rock Live ETS Arena Atlantic City Book your tickets at Ticketmaster.com
9: and SaiUSAInc.com
10: Batting to kafi sare karte hain Virat ek hi hota hai
11: Kohli goes down the ground Kohli goes out of the ground
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain par Bachchan ek hi hota hai
12: Ise apni jeb mein rakh le Peter अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
13: एक ही होता है
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Brick wale video game.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज की इन कलरफुल स्क्रीन्स के बीच में ना तुम्हारी वो काली सी स्क्रीन बड़ी याद आती है, वो टेढ़े मेढ़े ब्लॉक्स और तुम्हारे वो बटन दबाने पर जो बीप बीप की आवाज आती थी आज भी कानों में गूंजती है। जब दुनिया के बच्चों के पास एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन नहीं थे ना, तब तुम ही थे हमारी जन्नत। स्कूल से लौटते ही ना हम ना किताब खोलते थे ना तो बैग उतारते थे, बस तुम्हें हाथ में ले लिया जाता था। लाइन क्लियर करने का जो सुकून मिलता था ना, वैसा तो आजकल गेमिंग में भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट आजकल के गेमिंग सुकून के बजाय मोर ऑफ शोर एंड वायलेंस हो गए हैं। तुम्हारा टेट्रिस हो, कार रेस हो, टैंक फाइट या फिर वो स्नेक वाला गेम, हर एक मोड पर तुमने हमें जोड़े रखा। बैटरी निकाल निकाल के उल्टी करके लगाने का जुगाड़ और 99 in 1 लिखी हुई झूठी उम्मीदें, सब तुम्हारे साथ जुड़े हुए किस्से बन के रह गए। तुम्हारे बटन्स इतने चल चुके थे ना कि कई बार रोटेट वाला बटन दबाने पर लेफ्ट चल जाया करता था, पर फिर भी तुमसे प्यार कभी कम नहीं हुआ। तुमने घर में कितनी लड़ाइयाँ करवाई हैं, जब छोटे भाई बहन तुमसे गेम खेलना चाहते थे और हम कह देते थे बस ये लेवल पूरा होने दे उसके बाद ले लेना, तो बस फिर घमासान युद्ध हो जाया करता था घर में। आज जब मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर गेम्स खेलते हैं ना, तो मन करता है कि फिर से तुम्हारी उस सादगी भरे मासूम और असली मजे वाली दुनिया में लौट जाया जाए। तुम्हारी यादों को सलाम करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
8: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
10: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
0: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: SP बाला सुब्रमण्यम अलका याग्निक की आवाज में फिल्म साजन से ये गाना इज कैसेट के साइड बी का चौथा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार. वेल, उस टाइम में तो एक्चुअली होता यही था कि पहली बार जब साजन की आंखों में प्यार दिखा करता था तो एक एक्साइटमेंट तो होता ही था, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा होता था उस चीज का. और वही चीज जब गाने में तब्दील हो गई तो ये और बड़ा सेलिब्रेशन हो गया जो आज तक भी हमारी जिंदगी में मौजूद है. लेकिन बताए, आज के टाइम पर मुझे ये गाना कहाँ एप्लीकेबल लगता है? ऑनलाइन डेटिंग के मामले में. यार, जब आप किसी को ऑनलाइन ढूंढ लेते हो और आपको बातों ही बातों में लगता है कि दिस इज द वन, लेकिन मिले नहीं है तो कैसे कंफर्म कर सकते हैं? लेकिन जब फाइनली मिल जाते हैं, एक आध आपकी डेट के बाद आप जब उस इंसान से मिलते हो और आंखों ही आंखों में कन्वे करने लग जाते हो कि आपके दिल का मामला एक्चुअली अब गहरा चुका है, और वहां से भी सेम सिग्नल आता है ना, तो ये गाना एप्लीकेबल हो जाता है कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार. और कितनी सही बात है यार, डेटिंग ऐप से जब आप किसी से मिलते हो तो ये बात तो आती है आपके दिल में कि दिल भर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार. और फाइनली जब आप ऑफिस में तलाशते हो, पब्लिक प्लेसेस पे तलाशते हो, शादियों में तलाशते हो और आपको वो इंसान नहीं मिलता, फाइनली जब वो ऑनलाइन मिल ही जाता है तो फिर ये जो कुछ लाइन्स है ना, ये बड़ी एप्लीकेबल हो जाती है. जब हमारा दिल कह रहा होता है कि पल के झुकाऊं तुझे दिल में बसाऊं, अब बिन तेरे मैं तो कहीं चैन ना पाऊं, तू मेरा जिगर है, तू मेरी नजर है, तू मेरी आरजू, तू मेरा हमसफर है. ओए होए, चलो जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे ढूंढ लीजिएगा. यहाँ तो यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे ढूंढ लीजिएगा यहाँ के अलावा ऑन माई इंस्टाग्राम.

आपको पता है 1989 की फिल्म परिंदा का गाना प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, ये परिंदा मूवी के डायरेक्टर वैसे विधु विनोद चोपड़ा थे, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज शॉट बाय संजय लीला भंसाली जो उस टाइम विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड विधु विनोद चोपड़ा वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय संजय लीला भंसाली कि फिर उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के जितने भी सॉन्ग्स थे उनको शूट करने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली को दी और यहीं से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली के आइकॉनिक सॉन्ग शूट्स की। उसके बाद तो फिर वो देख दनादन सिक्सर मारते रहे, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परिंदा फिल्म के गाने शूट करने से हुई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना देखें तो ध्यान रखें दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ संजय लीला भंसाली। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Burka, burka. Nafis wala burka. Mirchi burka.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
3: समाचार
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
3: फेवर,
4: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता हूँ।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले।
4: शिवानी,
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy, oh,
11: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
12: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
12: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: आपको पता है आनंद फिल्म जब बन रही थी तो डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने राइटर गुलजार साहब को एक बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने ये बताया था भाई कि फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए कि आनंद राजेश खन्ना साहब का किरदार जो है वो मर चुका है। सस्पेंस में नहीं रखना है कि ऑडियंस पूरी फिल्म में सोचती रहे कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या क्या होगा। एंड आई थिंक दिस वर्क्ड ब्रिलियंटली फॉर दैट फिल्म, क्योंकि आपको पहले से पता है वो इंसान नहीं है और आप उसकी कहानी देख सुन रहे हो। एंड देन यू गेट टू नो कि ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ, और आपको लगता है कि यार आपकी जो परेशानियां हैं फिर वो कितनी छोटी हैं। तो हम भी फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं, हर मोमेंट को जी सकते हैं जैसे आनंद जीता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी कैसी है पहेली,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है अर्ली 80s में संजू बाबा, संजय दत्त और कपूर ब्रदर्स यानी कि रणधीर कपूर एंड स्पेसिफिकली ऋषि कपूर, इनका आपस में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था, खिटपिट हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अक्सर बंदों के बीच में जब खिटपिट होती है तो क्या वजह होती है, बंदी वजह होती है, एंड दैट बंदी वॉज टीना मुनीम। सो उस टाइम पे संजय दत्त एंड टीना मुनीम वर डेटिंग और उसी के साथ ये रूमर्स आए बिकॉज टीना मुनीम वॉज वर्किंग, हैड वर्क्ड विद ऋषि कपूर इन कर्ज मूवी और रणधीर कपूर के साथ वो हरजाई नाम की मूवी में काम कर रही थी। तो ऐसे रूमर्स आए कि वो दोनों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड हैं, समहाउ रणधीर कपूर के साथ भी और ऋषि कपूर के साथ भी, विच वॉज नॉट ट्रू। और इन रूमर्स ने संजय दत्त को बहुत अपसेट कर दिया और उनको ऐसा लगा कि ये रूमर्स कपूर ब्रदर्स ने फैलाए हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसी खिटपिट हो गई। देन नीतू सिंह इंटरवीन्ड एंड उन्होंने ये सारा जो कंफ्यूजन था ये सॉल्व किया और फिर उसके बाद वो लोग अच्छे टर्म्स पे हो गए। होता रहता है, चलता रहता है, फिल्मी दुनिया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

हाय वो टाइम जब हम फिल्म स्टार्स के अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी शायद एज अ स्क्रीन सेवर लगाते होंगे अपने फोन में उनकी फोटो। और क्योंकि एक टाइम पे पोस्टर्स बहुत पॉपुलर थे तो कयामत से कयामत तक फिल्म जब हिट हो रही थी ना, तो इसको प्रमोट करने के लिए बॉम्बे में एक प्रमोशन की गई कि अगर आप कयामत से कयामत तक के 8 से ज्यादा टिकट खरीदेंगे तो आपको आमिर खान और जूही चावला का पोस्टर मिलेगा फ्री फ्री फ्री। एंड गेस व्हाट, इट वर्क्ड। ऑलरेडी लोग फिल्म देखने आ रहे थे, पोस्टर के लालच में और आ गए, फिल्म और हिट हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

आपको पता है 1973 की फिल्म लोफर, उसमें उफ धर्मेंद्र इतने हैंडसम लगते हैं भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर धर्मेंद्र की सुंदरता मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म 1961 की पॉकेट फुल ऑफ मिरेकल्स, जो अगेन 1933 की एक फिल्म लेडी फॉर अ डे का रीमेक थी। इसी सब्जेक्ट पे 1989 में एक हांगकांग में फिल्म बनी थी मिरेकल्स नाम से, और इसी सब्जेक्ट पे 2008 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी सिंग इज किंग। तो सोचिए फिल्मों का इतिहास मतलब कहां से कहां जाता है भाई। खैर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। लोफर फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी साहब, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड संग बाय मोहम्मद रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Nerdy. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Nerdy, burga. Alô?
2: Alô, usko wahan se mat uthao, yaar. Alô?
1: Alô?
2: Alô, aap hold karna ek second, bhai sahab. Isko wahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthega, yaar. Toot jayega, sara saman toot jayega wahan se. Mat karo usko wahan se. Alô? हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है?
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवाना, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है उठवाना है,
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
10: पहले भी मैं तुमसे मिला।
11: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
12: विशाल मिश्रा,
9: जेटली ऑफ साई USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
13: and saiusainc.com.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
17: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
18: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
19: Purani jeans. With Charu. Only on

0: आपको पता है विनोद खन्ना साहब को कुछ प्रिंट मीडिया में सेक्सी सन्यासी भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि फिल्मों में एनीवे उनको बहुत हॉट बहुत गुड लुकिंग माना जाता था, जो कि वो थे। और अचानक से एट द पीक ऑफ हिज करियर 1978 में उन्होंने फिल्मों से अपना ब्रेक अनाउंस कर दिया और 1982 में वो स्पिरिचुअल गुरु ओशो के फॉलोअर बनके अमेरिका में उनके आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया, माली का काम किया, रसोईये का काम किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं, तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मजा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, यू नो, एक रसोईये का काम, रसोई का तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी। फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीज़ें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ मिलता।
0: सही है भाई, जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भौतिकता, अध्यात्म, लड़ाई, झगड़ा, प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab, mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.
15: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: One of the finest actresses of Indian cinema, Nutan Ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. उनका फिल्मों में आना शौक था या इत्तेफाक था? एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था.
1: ना इत्तेफाक था ना शौक था, मुझे लगता है एक क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही फिल्मों में थे. मेरे डायरेक्टर थे मेरे पिताजी और मेरी माता जी उस जमाने की फिल्म स्टार थी, तो एक नेचुरल चीज. मेरी पहली फिल्म थी हमारी बेटी और उसकी शूटिंग शुरू हुई थी लेट 1949 अर्ली 50 में.
0: अच्छा, इस टाइम ना नूतन जी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी क्योंकि वो बहुत स्लिम थी और आग में घी डालने का काम करते थे रिश्तेदार कि हाय कितनी पतली लड़की है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ. लेकिन इनकी जो शुरुआती फिल्में आई ना उनमें इनके काम की बहुत तारीफ हुई. फिर वही रिश्तेदारों के स्टेटमेंट्स बदल गए कि क्या टैलेंटेड लड़की है हमारी, पतली है तो क्या हुआ. अच्छा, इसी दौरान ना नूतन जी को स्विट्जरलैंड भेजा गया एक फिनिशिंग स्कूल में, जहाँ से वो और भी ग्रूम्ड कॉन्फिडेंट होकर लौटी. मैं भी वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: पवन
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
2: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में. अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
9: अब मिर्ची खा.
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Purani Jeans with Charu only.

0: नूतन जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस थी उनको म्यूजिक का भी उतना ही शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक फिल्म छबीली में खुद का गाना प्लेबैक भी किया था, लेकिन फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं किया। सुनिए इस बारे में एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने बचपन से, जब मैं 2.5-3 साल की थी, तब से मैंने क्लासिकल गाना सीखा। 14-15 साल मैंने गाना सीखा पंडित जगन्नाथ प्रसाद से, और वो तो मेरा रियाज जारी रहा, लेकिन मैंने उसको इतना फिल्मों में मैंने कंटिन्यू नहीं किया। फिल्म बनाने में एक संगीत की दुनिया और होती है और अदाकारी की दुनिया और होती है, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक कामयाब अभिनेत्री रही थी उस वक्त भी, क्योंकि छबीली जब बनी थी उस वक्त मेरी सुजाता भी बन चुकी थी, मेरे 2 ऑलरेडी अवार्ड्स दे थे मुझे, तो उसके बाद मैं ये इंसिस्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं खुद ही अपने गाने गाऊंगी, क्योंकि उसमें एक डर था कि अगर मैं ये इंसिस्ट करती तो शायद मैं अच्छे अच्छे रोल्स गंवा देती।
0: ये भी ठीक है। वैसे अगर आप पेइंग गेस्ट मूवी देखे ना, तो उसमें एक सीन है जहाँ पर एक डिबेट पोयम कंपटीशन टाइप का है, तो वहाँ पे जो भी गाया है ना नूतन जी ने, वो उनकी खुद की आवाज है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: करेगा।
1: कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 80s से पहले नूतन जी और दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्यों नहीं आई इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए नूतन जी ने क्या शेयर किया था।
2: आई तो नहीं, लेकिन हमने एक फिल्म इकट्ठे बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था शिकवा, बहुत पहले बनी थी 1951-52 में।
1: इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उनके फेवरेट को स्टार्स कौन थे।
2: एक तो बलराज जी थे और दूसरे अशोक कुमार जी और राज कपूर जी। राज कपूर जी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही नॉलेज है और एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए हीरो भी मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है।
1: वैसे बच्चन साहब के साथ उनकी एक जो फिल्म आई थी उसे ना हमारे घर में गुड़ वाली फिल्म बोला जाता है। उस फिल्म में गुड़ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सौदागर फिल्म। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La
1: virpa, la burga. Mirchi, burga. Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आज सर वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कोंडा में कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात सुन पहले बात सुन। और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ना ये बंद कर
2: सर। बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mercedes के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com. अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, EKG एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
10: Purani Jeans. With Charu. Only on

0: एक पुराने इंटरव्यू में ना नूतन जी से थोड़ा ट्रिकी थोड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़ा सटली पूछा गया था कि अक्सर फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए रील वाली फीलिंग का रियल वाली फीलिंग में बदलने का खतरा रहता है। इस पर सुनिए नूतन जी ने क्या कहा था।
1: क्या है कि हम जब काम करते हैं तो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ चीज हो जाती है। उस वक्त के लिए हम डायलॉग याद करते हैं और उस वक्त के लिए वो हम एक्टिंग करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पर्सनल रिश्ते नाते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाते जो हमेशा थे पहले की तरह।
0: वेरी स्मार्ट आंसर। और किन किन एक्टर्स के साथ उनकी जोड़ी पॉपुलर रही इसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: देव साहब, देवानंद जी, मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी, लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपने पिक्चर में हम दोनों को ही लिया था। तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल, उसके बाद राज जी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है जैसे एक पैर क्लिक कर जाता है।
0: सही है, इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
9: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਿਏ Zoho One ਸਹੀ ਹੈ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, ਸਾਥ ਸਾਥ privacy ਔਰ protection ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਏਕ, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
18: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
19: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नूतन जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एवर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नूतन जी जिस तरह से इमोट करती थी ना, यू जस्ट कांट टेक आईज ऑफ हर फेस। और एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले क्या उनके मन में चलता है, कैसे वो तैयारी करती हैं।
1: देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है अब वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है।
0: और उनकी सभी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेज में से उनकी फेवरेट कौन सी रही?
1: देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था। और अलग अलग उसमें सारे यानी के अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी।
0: वैसे ये फिल्म देख के ना मैं थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थी। इतने हैंडसम धर्मेंद्र के प्रपोजल को नूतन जी ने ठुकरा दिया था। तब समझ नहीं थी ना कि क्या मीनिंग था उस फिल्म का। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, इज़िलिन।
5: कुड़ी

0: musical doctors.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi, it's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड वेलकम टू दिस थ्रो बैक थर्सडे। वैसे तो दोस्तों जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती ही जाती है, लेकिन हम कभी कभार रियर व्यू मिरर में भी देख लेते हैं और शायद उसी के लिए ना थ्रो बैक थर्सडेज बने। तो चलिए आज के इस थ्रो बैक थर्सडे में कुछ पुराने गाने, कुछ पुराने मूवीज के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने यार इतनी सारी मेमोरीज हमें दी है। तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं विद धमाकेदार गाने, बॉलीवुड गॉसिप्स और ढेर सारी नॉस्टैल्जिया। Right here on Mirchi, it's hot.

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
8: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा, सगाई शादी बेबी शावर जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा, हम अमेरिका में ताजा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं, हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 7329866241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू एडिसन न्यू जर्सी।
9: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
10: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
9: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
11: Listener MA, back to back gana sunega.
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, आशीष कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

चुप्पो है बादशाह शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम। दोस्तों थ्रोबैक थर्सडे पे आज एक छोटी सी याद, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और थ्रोबैक टू द टाइम जब यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि गाना हम स्किप कर सकते थे। जी हाँ, याद है वो वक्त जब गाना सिर्फ सुनना नहीं होता था, गाने के साथ थोड़ा जीना भी होता था। पहले इंट्रो आता था, फिर धीरे धीरे धुन बिल्डअप होती थी, फिर अंतरा, और फिर पता ही नहीं चलता था कि कब पूरा गाना खत्म हो गया। और जी हाँ, आज वही गाने कभी कभी छोटी से एक रील मोमेंट मिलते हैं, कभी एक लाइन, कभी एक हुक, और कभी बस वही रिपीट पे चलती रहती है। रील ना हमें उस गाने का एक ही हिस्सा याद दिलाता है, पर रेडियो पे जब हम ये गाने पहले सुनते थे तो पूरा गाना फील करवा देता था। तो जैसे कभी कोई गाना पूरा याद होता था, अब उसका सिर्फ एक टुकड़ा ही याद रह जाता है। पर यार जब भी हम वापस जाके ऐसे किसी गाने को पूरा सुनते हैं ना, तो लगता है कि जैसे कोई पुरानी डायरी खुल गई हो। हर लाइन, हर म्यूजिक पीस कुछ ना कुछ याद तो जरूर दिला देता है। तो चलिए दोस्तों, रेडियो पे उसी एहसास को वापस लाते हैं, बिना स्किप किए इस गाने को पूरा सुनते हैं। और आप भी बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको कंप्लीट याद है, सिर्फ रील वाला पार्ट नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल आपके लिए ये अगला खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
8: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.
12: It's 4:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
13: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
14: दोस्तों, जैसे वक्त बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं, वैसे बॉलीवुड का म्यूजिक फ्लेवर भी बदल रहा है. शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि. और जो 90s एंड 2000s में मेलेडी और लिरिक्स डोमिनेट करते थे, आज के वक्त में प्रोडक्शन, बीट्स और ग्लोबल साउंड इन्फ्लुएंस ज्यादा आ चुका है. जी हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी कोई सोलफुल गाना आता है ना, इंस्टेंटली हिट हो जाता है. मतलब ट्रेंड चाहे कुछ भी हो, इमोशंस अभी भी किंग है. तो आप भी बताना, आप भी कौन सी ऐसी ओल्ड स्कूल मेलेडी पसंद करते हो जो आज के न्यू एज बीट्स को भी बीट कर दे. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरी पसंद की ओल्ड स्कूल मेलेडी ये रही आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants, and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: दोस्तों बॉलीवुड का एक इंटरेस्टिंग फेज चल रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, थिएटर्स वापस फुल हो रहे हैं, पर ऑडियंस बदल चुकी है। अब लोग हर फिल्म के लिए थिएटर्स नहीं जाते, सिर्फ उन फिल्म्स के लिए जाते हैं जो एक्सपीरियंस देती है। जैसे जब कोई बिग स्केल एक्शन या विजुअल स्पेक्टेकल आता है ना, तब लोग बोलते हैं कि यार इस मूवी को तो थिएटर में ही देखना चाहिए। लेकिन बाकी कॉन्टेंट ओटीटी पे इक्वली स्ट्रांग चल रहा है। मतलब बॉलीवुड अब दो ट्रैक्स पर चल रहा है, इवेंट सिनेमा और इंटीमेट स्टोरी टेलिंग। तो आप भी बताओ दोस्तों कि आप थिएटर जाने के लिए क्या चूज करते हो, स्टोरी या स्केल? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका।

इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Sharda, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर जोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और जोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La
1: virpa, la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है?
2: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और
1: पूरा
2: सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो,
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
8: Chamakte Sitare 2026.
7: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
9: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
10: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
11: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
12: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
13: पहले भी मैं तुमसे
14: मिला। Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
15: Vishal Mishra.
16: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
17: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
18: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
19: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसी चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।
1: Jai Sairam, Mirchi listeners, your friend Bish from Land Mortgage. Weather in the 80s, phenomenal. And the U.S. market has rebound. No changes in the mortgage rates. Mortgage rates remain in the mid-sixes, heading into the end of the typical busy home buying season. The prospect of easing energy prices, given the evolving situation in the Middle East, brought mortgage rates slightly lower. There are two basic types of mortgage rates, fixed and adjustable rates. A fixed rate mortgage locks in your rate for the entire life of your loan. Example being 30-year fixed, 20-year fixed, or 15-year fixed. An adjustable rate mortgage keeps your rate the same for the first few years, then changes it periodically. It depends on several factors such as economy and the housing market. So friends, buying your dream home, advice is free. Don't hesitate to call Land Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. It is lionmtg.com. I still get calls from our listeners, and the current mortgage rates are over 7%. Please, don't sit on it. Allow us to help you lower your mortgage rates and payments. Also, those who have an FHA loan with high rates, call us today and we will be able to refinance your existing FHA loan with a zero closing cost. So friends, buying your dream home or refinancing, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598 on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot in association with World Vegan Vision.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
6: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
5: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
7: अभी न जाओ छोड़ कर।
6: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Fridays 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धियर। जी हाँ, मेरे साथ अब मूड को भी थोड़ा सूट पहनाओ और यार डांस के बीट्स पर टाई पहन के नाच लो, क्योंकि एक ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, बात हो रही है बदतमीज दिल। यार इस ट्रैक का चार्म ही ये था कि ये गाना ना सूट में भी पार्टी करवा देता था। बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस की वोकल्स एकदम मिस्चीफ और मस्ती मोड में थी, और प्रीतम का ग्रूव यार ऐसा कि ट्रैफिक लाइट पर भी ना शोल्डर्स हिलने लगते थे। और मजे की बात तो ये है कि ये जो गाना है यानी बदतमीज दिल फ्रॉम द एल्बम ये जवानी है दीवानी, इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डी सूजा ने की थी, और शायद इसीलिए इस गाने को ना बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला था। सो जी हाँ, अगर आप वो हुक स्टेप कॉपी करते हो तो जी उसके पीछे एक एक्चुअल ट्रॉफी एनर्जी भी है। तो यार आप भी बताना कि बदतमीज दिल पर कभी क्यूट सा मूव किया है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और दोस्तों ये जो गाना है बदतमीज दिल, माने ना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, आपके लिए बजने वाला है अभी। लेकिन यार इस एल्बम के और भी कई सारे गाने हैं जो जिसके बारे में हम बातें करेंगे, और आप भी मुझे बताना ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको हिट लगते हैं, टेल मी ऑन इंस्टा। तब तक के लिए बदतमीज दिल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
3: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, एक ऐसा गाना, एक ऐसे एल्बम का कि यार होली का सीजन हो या ना हो, लेकिन ये गाना बजते ही दुनिया रंगों के बैंडविड्थ पर आ जाती है। जी हाँ, बात हो रही है बलम पिचकारी की फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। वैसे तो यार ये गाना ही इतना, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग था क्योंकि इसमें था थोड़ा कलर, थोड़ा केओस, बट फुल ऑन मस्ती। विशाल ददलानी का स्वैग और शलमली की प्लेफुल वोकल बाउंस, यार ये कॉम्बो इस गाने को ना इंस्टेंट फेस्टिवल हिट बना देती थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि रणबीर कपूर ने बताया था कि इस गाने की शूटिंग ऑलमोस्ट 8 दिन चली थी, और धूप के साथ डांसर्स और उनकी एनर्जी लेवल यार फुल ऑन मैराथन टाइप सिचुएशन थी। तो जी हाँ, ये भी मेंशन किया था कि शूट के दौरान ना कुछ तो भांग वाली किस्से भी हुए थे। वेल, ये तो बॉलीवुड है और यहाँ गुलाल के साथ स्टोरीज भी उड़ती है। तो आप भी बताना कि आपका मोस्ट फिल्मी होली मोमेंट क्या था, और वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको भी बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल के लिए सुपर हिट एल्बम का सुपर हिट गाना बलम पिचकारी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कभी कभार कुछ गानों में कुछ कलाकारों की एंट्री ऐसे हो जाती है कि यार कलेक्टिव रिएक्शन आ जाता है ऑडियंस से, दैट क्वीन इज हियर। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान रेखा भरद्वाज की आवाज में ये जो गाना है घगरा फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, यार इनकी आवाज़ ने वो एक ऐसी अर्थी टेक्सचर दी थी कि फुल ऑन फोक गाने को भी प्रीमियम बना दिया था। और विशाल ददलानी ने उसमें जो पंच डाला था उसके बाद प्रीतम का कंपोजिशन, मतलब यार देसी मीट्स ब्लॉकबस्टर। तो यार मज़े की बात तो ये थी कि जब लोगों ने इस गाने के बारे में घगरा इस गाने के बारे में बस सुनी थी तभी पता चल गया था कि माधुरी दीक्षित का ये आइटम सॉन्ग रहने वाला है। और इसके पहले लुक से ही यार ये रिपोर्ट हो चुका था कि रणबीर कपूर के साथ उनका डांस मोमेंट इस गाने में दिखाई देगा, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी, दैट द क्वीन वाज बैक विद अनदर आइटम सॉन्ग। तो जी हाँ, माधुरी दीक्षित का वो कौन सा ऐसा आइकॉनिक गाना है जो आपके लिए भी फॉरएवर नंबर वन है? मेरे लिए तो ये उनके लिस्ट में से एक तो है ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसमें यार माधुरी को देखते ही मतलब बस मन करता है कि देखते जाओ देखते जाओ। तो शायद इसी के वजह से ये गाना भी हिट बना था फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी। तो चलिए बजाते हैं घाघरा। लेकिन आप भी मुझे बताना विच इज योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। चल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR, और तब तक के लिए माधुरी दीक्षित का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: Mirchi.
1: Buscaba la buscabana, sacabana.
2: La bala.
1: Burga, burga. La virpa, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: Sir,
4: मैं actually आपसे रहे request करना चाहता हूँ. मैं तो आप सुना है वो singing winging सिखाते हैं सर. तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक कहीं घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाइए.
4: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश करूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा.
3: सुन ले बात मेरी.
4: बात
3: सुन पहले बात.
4: हाँ सर.
3: और जब बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर.
4: सर बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते. समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका.

0: Lead che saat, only on Mirchi. It's hot. Yep, attack. This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
0: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
3: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
4: अभी न जाओ छोड़कर।
0: 28 जून 3 PM एट ITV गोल्ड ऑडिटोरियम, ओक ट्री रोड। कॉल सतीश राइट नाउ एट 862-812-9111।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
0: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
6: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyaar se kootti, muskura kar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
0: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
7: पहले भी मैं
8: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
0: अमित जेटली ऑफ साई USA इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
15: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.

0: 6:30 PM. मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय RK Jewels. RK Jewels, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम RK Jewels. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
1: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट. शाम शांता लाइव सुबह आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2013 के एल्बम के उस गाने की जिसके वजह से ना मतलब सूटकेस पैक्ड हो या ना हो दिल ऑटोमेटिकली इलाही मोड़ पे चला जाता है. जी हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना इलाही संग बाय अरिजीत सिंह. वैसे यार मजे की बात तो ये कि अरिजीत सिंह की ब्रीजी ओपन थ्रोटेड डिलीवरी और प्रीतम का लाइट गिटार लेड अरेंजमेंट मिलकर एक ऐसा वाइब क्रिएट करता था जैसे कि यार जिंदगी ना हाँ बोल रही हो. मतलब लिरिक्स भी अमिताभ भट्टाचार्य के एकदम सिंपल से, ऑनेस्ट से और सीधे दिल तक पहुंचने वाले. वैसे तो ये जो गाना है इलाही, इसका रिप्रीज वर्जन मोहित चौहान ने गाया था क्योंकि यार सेम जर्नी थी लेकिन अलग टेक्सचर था. तो दोनों वर्जन अगर सुनो ना तो लगता है कि यार एक ही सफ़र को दो नज़रियों से देखा गया है. फिल्म में वैसे रणबीर कपूर के ट्रैवल मॉन्टाजेस ने भी इस ट्रैक को प्योर बैकपैक एंथम बना दिया था. मतलब जब भी ट्रैवल का मन करे ना ये गाना दिमाग में डेफिनेटली आता है. तो चाहे हेडफोन्स पे सुन लो या फिर अपने गाड़ी में, यार ये गाना कहीं और ट्रांसपोर्ट कर ही देता है. तो चलिए सुनते हैं इस हिट एल्बम का ये अमेजिंग सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. लेकिन आप भी मुझे बताना वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है. वो बजाते हैं यहाँ पर. फिलहाल सुनते हैं इलाही फ्रॉम द हिट एल्बम ये जवानी है दीवानी. राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, बॉलीवुड में कमबैक का चार्म अलग ही होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई एक्टर ब्रेक के बाद वापस आता है ना, तो ऑडियंस का रिएक्शन इमोशनल भी होता है और क्यूरियस भी, क्योंकि उस एक्टर के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो वापस स्ट्रांग रोल में आता है ना, तो यार वो सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। और ऐसे फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को इतने सालों बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पे देखने का चार्म ही अलग होता है। वैसे आजकल ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो ओटीटी पे आए, तो यार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे उनका ट्रांजिशन देखना और बहुत सालों पहले जो उन्होंने हीरो के रोल किए थे वो चेंज होकर अब वो एक एक्टर या कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, ये देखना भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कमबैक है एक बड़े एक्टर का जो आपको बहुत पसंद आया। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं
3: नहीं, बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
13: पहले भी मैं तुमसे मिला।
14: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra. Vishal Mishra.
15: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab, Mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.
19: Say what?

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीति चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, एडल्टहुड कभी न अजीब सा वर्जन होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी एक वक्त था जब दोस्त रोज मिल जाते थे, लेकिन अब प्लान्स कैलेंडर पे होते हैं और सिटीज के नाम फ्रेंडशिप्स के बीच में आ जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक मैसेज आता है, आई एम इन टाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, कैन वी मीट। और फिर क्या, पूरी ट्रिप के बीच में एक छोटा सा वक्त ऐसा निकलता है, चाहे फिर वो क्विक कॉफी हो, कभी लेट नाइट फ्राइज हो, कभी बस एक छोटा सा ड्राइव। लेकिन मिलते ही ना दोस्त की वो पहली लाइन होती है कि यार तू तो बिल्कुल नहीं बदला, और नेक्स्ट 2 घंटे में पूरा पुराना वर्जन ऑफ योरसेल्फ वापस आ जाता है। और मजे की बात तो ये होती है कि इतने लंबे गैप के बाद भी ना कॉन्वर्जेशंस वहीं से शुरू होते हैं जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी। और शायद इसीलिए पुराने दोस्त स्पेशल होते हैं, उनके साथ एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस वीक आप भी किसी पुराने दोस्त से मिलने वाले हो तो थोड़ा सा वक्त जरूर निकालना वही पुरानी यादों के लिए, क्योंकि कभी कभी एक क्विक मील में भी फुल थेरेपी लगती है। और मुझे जरूर बताना कि आपके वो पुराने दोस्त के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरे उस पुराने दोस्त के लिए जिससे मैं मिलूंगी, उसके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
0: विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी फ्राइडे जून 26 हार्ड रॉक अटलांटिक सिटी। बुक एट टिकट मास्टर एंड sciusainc.com.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: Listener MA. बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन ना, आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।